मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:55 हुए हैं। सुनिए खेत खलियान कार्यक्रम में पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है अमरूद के बाग की देखभाल। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: भाइयों नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख फलों में अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें विपरीत दशाओं के प्रति काफी हद तक सहिष्णुता पाई जाती है। यह दूसरे फल वृक्षों की अपेक्षा अधिक गर्मी और सूखा सहन कर सकता है। अपनी लोकप्रियता और अनुकूलता के कारण इसकी बागवानी पूरे भारत में की जाती है। अमरूद के पौधों में सुंदर एवं मजबूत ढांचा देने के लिए 2 से 3 वर्ष तक कटाई छटाई की जाती है। ढांचा देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जमीन से 30 से 40 सेंटीमीटर तक मुख्य तने पर कोई शाखा न हो। इसी ऊंचाई पर मुख्य तने से 3-4 शाखाओं को चारों तरफ समान रूप से निकलने देना चाहिए। तदुपरांत पौधे के आकार को नियमित रखने एवं अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर आवश्यक काट छाट करते रहना चाहिए। कटाई छटाई मार्च से जून तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। अमरूद के छोटे पौधों को नियमित रूप से सिंचाई देते रहना चाहिए जिससे पेड़ की जड़ क्षेत्र नम बना रहे। सर्दियों में 20 से 25 दिन तथा गर्मियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर थाला विधाई विधि से सिंचाई करते रहने से पौधों का विकास अच्छा होता है। सिंचाई के बाद समय समय पर गुड़ाई एवं घास निकालते रहना चाहिए। फल लगने वाले पौधों में फूल के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि जब फूल आ रहे हों उस समय सिंचाई नहीं करें। ऐसा करने से फूल गिर जाएगा एवं फल कम लगेंगे। खरपतवार निकालते समय गुड़ाई कम करना चाहिए क्योंकि अमरूद की जड़ें ऊपरी सतह पर ही होती हैं। प्रारंभ के 2-3 वर्षों में बाग के अधिकतर जगहों पर कुछ सब्जी वाली फसलें जैसे मटर, गोभी, ग्वार, लोबिया आदि उगाई जा सकती है। जब फल मिलने आरंभ हो जाए तो अंतःसस्यन नहीं करना चाहिए। नए बागों में रबी में गोभी, मटर, फ्रेंच बीन और मेथी, खरीफ में लोबिया, ग्वार, उर्द और मूंग तथा जायद में कद्दू वर्गीय सब्जियां उगाई जा सकती हैं। जिन क्षेत्रों में बरसात अधिक होती हो और भूमि क्षरण यानी कि कटाव की समस्या हो वहां बरसात में भूसंरक्षी फसलें जैसे लोबिया, ग्वार, सनई

0: आदि को बाग के खाली जगहों में लगाना चाहिए। अंतः सस्यन करते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंतः फसलें कम बढ़ने वाली होनी चाहिए। फसल लगाते समय कम से कम 1 मीटर जमीन पेड़ के चारों तरफ छोड़ देनी चाहिए। इन फसलों की सिंचाई की आवश्यकता मुख्य फसल जैसी होनी चाहिए। ऐसे फसलों का चुनाव करना चाहिए जो भूमि से बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व लेते हों। गन्ना, अरहर, मक्का, ज्वार आदि फसलें बाग में नहीं लगानी चाहिए। अच्छी पैदावार और स्वादिष्ट फलों के लिए पौधों को नियमित खाद और उर्वरक देना आवश्यक होता है। खाद एवं उर्वरक की मात्रा को 2 भागों में बांटकर पहला भाग जून जुलाई में और बाकी बचा पोषक तत्व तो अक्टूबर माह में देना चाहिए। जून जुलाई में गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा तने से 1 मीटर दूरी पर पौधों के छत्रक के नीचे गोलाई में 15 सेंटीमीटर गहरी नाली में देकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। यूरिया की बची आधी मात्रा को अक्टूबर में पेड़ों के नजदीक आप दें। यदि वर्षा न हो रही हो तो खाद के बाद पानी देना आवश्यक होता है जिससे नमी बनी रहे। अमरूद के पेड़ों में 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 260 ग्राम यूरिया, 375 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 100 ग्राम पोटेशियम सल्फेट प्रति पेड़ प्रति वर्ष देना चाहिए। इतनी ही मात्रा प्रत्येक वर्ष प्रति पेड़ 50 वर्षों तक बढ़ाते रहना चाहिए। 5 वर्षों के बाद प्रति वर्ष 5वें वर्ष में जितना खाद एवं उर्वरक दिया गया हो उतना ही देना चाहिए।
1: खेत खलियान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीनिवास सहाय से अमरूद के बाग की देखभाल विषय पर जानकारी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं, अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। इसे हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति

चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए

0: माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।
2: पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को सरल शब्दों में कहें तो हर वो चीज़ जिससे हम घिरे हुए हैं, वायु, जल, पेड़ पौधे, खनिज, वो सारी प्राकृतिक उपहार जिन्हें प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए दिया है। इनमें से वायु और जल तो इतने सुलभ हैं कि कुछ वर्ष पूर्व तक इनकी अहमियत का एहसास तक हमें नहीं था, पर अब वक्त बदल रहा है। वैसे तो मनुष्य के विकास का सीधा असर पर्यावरण पर आदिकाल से पड़ता रहा है। मनुष्य के पैर जहाँ जहाँ पसरते गए वहाँ जंगल सिमटते गए, कई जानवर विलुप्त होते गए और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर हमारा विकास एक भार बनता गया है। पर पिछले 200 से 300 सालों में औद्योगिक क्रांति और उपभोक्तावाद ने मानवीय विकास को घातीय तरीके से बढ़ा दिया है और इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ भी रहा है। पर अब ये असर सामान्य जनजीवन में दिखने भी लगा है। वायु प्रदूषण पर्यावरण के कुप्रभाव का सबसे ज़्यादा प्रतीत होने वाला एक उदाहरण है। अगर वैज्ञानिक आंकड़ों को आधार माने तो देश की राजधानी की हवा जहरीली है, और सिर्फ दिल्ली क्यों, देश के कई नगर की यही कहानी है। ओजोन का छिद्र बढ़ता जा रहा है और ये छिद्र ठीक अंटार्कटिका के ऊपर है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। जमीन के नीचे का जल स्तर गिरता जा रहा है जिससे पीने के पानी की किल्लत देश में एक आम समस्या बन गई है। बढ़ती जनसंख्या के ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए पर्यावरण का जिस प्रकार हम शोषण कर रहे हैं, आज ये स्थिति डरावने स्तर पर पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम नहीं हो रहा है। वैश्विक स्तर पर सम्मेलन होता है, पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाए जाते हैं, बारिश के पानी को संचित करने के उपाय किए जा रहे हैं, पर सबसे बड़ा परिवर्तन तभी दिखेगा जब पर्यावरण संरक्षण को समाज का, देश का हर व्यक्ति अपना निजी कर्तव्य समझेगा और इस कार्य के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। घर या कार्यालय से निकलते समय बिजली बंद कर दें, पानी का यथासंभव दुरुपयोग ना करें, निजी वाहनों का उपयोग कम कर सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। किसी भी संसाधन का उपयोग करते समय अगर हमारे मन को हम ये समझा सकें कि इस संसाधन की कीमत सिर्फ अमुक रुपये नहीं, पर्यावरण के प्रति हमारा एक कर्ज है जिसे शायद भविष्य में हमारी

0: अपनी पीढ़ी को चुकाना होगा, तो पर्यावरण के प्रति हमारा नज़रिया बदलेगा। पर्यावरण ही वो अनमोल उपहार है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देने जा रहे हैं, और अगर हम इसे आज संरक्षित रखने में नाकामयाब रहे तो शायद हम आने वाली पीढ़ी को एक जीने योग्य जिंदगी भी दे पाने में सामर्थ्य नहीं होंगे। अतः एक संकल्प लें, खुद से, आज से, अभी से, अपनी दिनचर्या के हर कार्य में हम इस बात का ख्याल रखें कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान दें, इतना तो हम कर ही सकते हैं।
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे थे चिंतन मनन। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में देश वंदना।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही वंदना कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है गर्मियों में आंखों का देखभाल। वार्ताकार है डॉक्टर उमा शंकर सिन्हा। माफ कीजिएगा, वार्ताकार है डॉक्टर उमा शंकर सिंह।
1: मौसम चाहे ठंडी का हो या गर्मी का, बसंत का हो या बरसात का, आँखों का देखभाल एवं इसकी सुरक्षा हर मौसम में जरूरी है। यूं तो प्रकृति ने इसकी सुरक्षा हेतु कई उपाय किए हैं, कई अन्य रचनाओं की रचना की है, परंतु यदि हम खुद सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये रचनाएं भी हमारी आँखों को सुरक्षित नहीं रख सकेगी। गर्मी के इस मौसम में धूप तो गर्म रहती ही है, साथ ही साथ इस मौसम में वायुमंडल में धूलकण की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसमें लौहकण, रेतकण, परागकण एवं अन्य कई प्रकार के कारण हवा में तैरते रहते हैं और अक्सर हमारी आँखों में प्रवेश कर जाती हैं एवं एक प्रकार से आँखों में असहज स्थिति पैदा कर देती है। आँखों में एक प्रकार का चुभन, एक प्रकार का जलन पैदा कर देती है। आँखों से ढेर सारा पानी गिरने लगता है, जिससे छुटकारा पाने हेतु अक्सर हम अपनी आँखों को रगड़ने लगते हैं, जिससे कुछ मामले में तो आराम मिल भी सकता है परंतु कुछ मामले में मामला फंस भी जाता है। खासकर धूलकण किसी ठोस या धातु कण में हो, ये ठोस कण आँखों के रगड़ने से अक्सर आँख की कोमल रचना, खासकर पारदर्शी रचना कॉर्निया में खरोच पैदा कर देती है, जिसका सही समय पर समुचित इलाज यदि नहीं किया जाए तो वह संक्रमित हो जाता है और भविष्य में कई प्रकार की जटिलताएं पैदा कर

0: सकता है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपनी रोशनी खोने के साथ साथ अपनी आँखों को भी खो सकता है। इस गंभीर परिणाम से बचने के लिए जरूरी है कि जब कभी किसी प्रकार का कण आँखों में चला जाए तो आँखों को रगड़े नहीं बल्कि साफ पानी से धोने का प्रयास करें। यदि आसानी से निकल जाता है तो ठीक है, वरना खुद से निकालने का प्रयास न करें बल्कि नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें ताकि उचित तरीके से निकाला जा सके एवं आँखें सुरक्षित रह सके। गर्मी के मौसम में न सिर्फ धूल कण का ही खतरा रहता है बल्कि गर्मी के चलते आंसू भी जल्द सूख जाते हैं, आंसू कम बनने लगता है जो कि आंखों में स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी से आंखों में कसकसाहट महसूस होती है, आंखों में जलन पैदा हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है एवं कई प्रकार के कष्ट देने लगता है। इन समस्याओं से बचने के लिए ज़रूरी है कि इस मौसम में धूप चश्मा का प्रयोग करें जो न सिर्फ आँखों में धूल कण जाने से रोकेगा बल्कि आँखों में ठंडापन का एहसास भी कराएगा। परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि धूप चश्मा अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, वरना लेना का देना पड़ सकता है। इन सारे सावधानियों के अलावा ज़रूरी है कि इस मौसम में रात में सोने के पहले प्रतिदिन आँखों को अच्छी तरह साफ पानी से धोकर सोएं ताकि दिन भर आँखों में गए धूल कण पसीना वगैरह बाहर आ जाए और हमारी आँखें सुरक्षित रह सके। गर्मी के इसी मौसम में हमारे यहाँ खेती का काम जोर शोर से चलता है, कहीं फसल की कटनी चल रही होती है तो कहीं फसल की तैयारी। अक्सर कटनी के वक्त आँखों में फसल का कोई हिस्सा आँखों में किसी हिस्सा में खतरनाक तरीके से घुस जाता है जो कभी कष्ट देता है और इसे खुद ही निकालने का प्रयास करना करें, यह आपको हानि कर पहुँचा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि खेतों में काम करने वक्त सावधानी बरतें, फिर भी कुछ समस्याएं हो जाए तो नेत्र विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें क्योंकि फसल द्वारा उत्पन्न घाव विशेष प्रकार की होती है जिसमें विशेष प्रकार के इलाज की जरूरत पड़ती है। गर्मी के मौसम में अक्सर हमारा मन तालाब पोखर या नदी में नहाने का करता है और हम नहा भी लेते हैं, परंतु इस मौसम में अक्सर तालाब पोखर के पानी गंदे रहते हैं जिससे हमारी आंखें संक्रमित हो जाती है। नहाने के कुछ घंटे बाद ही हमारी आंखों में लाल हो जाती है, इसमें चुभन पैदा होने लगता है, ऐसा लगता है आंखों में बालू का कण चला गया हो, आंखों से पानी गिरने लगता है, सवेरे सो के जगने पर हमारी आंखें सट जाती है। यह एक प्रकार का छुथा बीमारी है जिसे चिकित्सा विज्ञान में कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है। इस बीमारी में यदि सावधानी न बरता जाए तो दूसरे व्यक्तियों खासकर उन लोगों में जल्द फैलने की संभावना बढ़ जाती है जो रोग से ग्रसित व्यक्ति का रुमाल या तौलिया या चादर या तकिया का साझा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति को यह बीमारी हो गई हो वे अपना तौलिया रुमाल वगैरह अलग रखें ताकि परिवार या अन्य निकट के लोग इससे बच सके, साथ ही साथ उन्हें भीड़ भरी जगहों सभाओं मेला में जाने से भी परहेज करना चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना डॉक्टर उमा शंकर सिंह से वार्ता, विषय था गर्मियों में आंखों का देखभाल। वार्ताकार थे डॉक्टर उमा शंकर सिंह। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। गायक कलाकार हैं रंजना जोगलेकर और श्रीकांत पारगांवकर।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां दो दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधुजन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधुजन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

रामचरित मानस गान संपन्न हुआ। गायक थे रंजना जोगलेकर और श्रीकांत पारगांवकर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। कार्यक्रम विवरण इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, आज अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 7 बजे आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आप सुनते हैं रसरंग, मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, कानून की बातें और कुछ फिल्मी गीत। 9:06 पर पेश किया जाएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। साथ ही आप अलग अलग समयों पर भी फिल्मी गीतों का आनंद ले पाएंगे, जैसे सुबह 10 बजे पुरानी फिल्मों के तहत, चित्रपट से के तहत दोपहर 2:30 पर, शाम 5:30 पर और रजनीगंधा के तहत रात्रि 8 बजे। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, कलाकार होंगे राजीव कुमार सिंह। 10:30 पर आप सुन पाएंगे लोकगीत कार्यक्रम, कलाकार होंगे वीरेंद्र कुमार ठाकुर। श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद पेश किया जाएगा 11 बजे। प्रस्तुति एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 12 बजे सुनिए नारी लोक कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर संगम प्रस्तुत किया जाएगा 12:30 पर, कलाकार होंगे पंडित जसराज। दिन के 1 बजे लोक रंग प्रस्तुत करेंगे गौतम कुमार मंडल। संताली कार्यक्रम जीवन झरना आप सुनेंगे 1:30 पर, प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 3 बजे, कलाकार होंगे डूंगर राम भाट और साथी। 3:20 पर आप सुनते हैं देशभक्ति गीत और 3:25 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम को।

शाम की शुरुआत होगी 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के साथ। प्रस्तुत करता होंगे सौरभ कुमार। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे 5:55 पर। 6 बजे प्रस्तुत किया जाएगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। लोकगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:10 पर। गायक कलाकार होंगे गोपाल भगत। 7:52 पर प्रस्तुत किया जाएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। कलाकार होंगे सुशील ठाकुर। 9:30 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत भारती कार्यक्रम। और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कलाकार होंगे राजकुमार मजुमदार। कार्यक्रम विवरण में अभी आपने सुना हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणक्कम और प्रणाम साथियों। आज की इस एनर्जेटिक सुबह में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त रिया। तो कैसे हैं आप सब साथियों? उम्मीद करती हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त भी होंगे, साथ ही अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और इस खूबसूरत मौसम का आनंद भी ले रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से आकाशवाणी भागलपुर भी ट्विन कर चुके होंगे। तो श्रोताओं, बिना देर किए आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे भजन से।

हे प्रभु, आपके दर्शन न मिलने के कारण मुझे पल भर भी चैन और शांति नहीं मिली। मेरा मन हर समय आपकी याद में व्याकुल रहता है। हे हरि, आप कब मिलोगे? सुनिए मीराबाई की भक्ति रचना, स्वर है सीमा बनर्जी के।

मासूम उम्मीदें, नई शुरुआत, पहला प्रेम, आशा का संदेश, जब इसे लेकर कोई आगे बढ़ता है तो वे अक्सर समय की बेरहम हकीकत या सामाजिक अवरोधों के आगे टिक नहीं पाते। सुनिए दुष्यंत कुमार के लिखे इस गीत को, स्वर है सीमा बनर्जी की।

पुरानी मान्यताओं, नकारात्मक विचारों, मोह, अज्ञानता और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होना, इस बंधन को छोड़ना, आत्मिक शांति की ओर बढ़ना है। आप सुन रहे हैं श्रीमा बनर्जी की आवाज़ को।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुनना शुरू कर चुके हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। तो साथियों, वक्त हो चला है अपने अगले चंक की ओर बढ़ने का, और आज है दोस्तों शनिवार, जहां आज के दिन हम लाते हैं आपके लिए खास कानून की बातें। तो आज का हमारा विषय है भारत में पर्यावरण सुरक्षा। वार्ताकार है भारत में पर्यावरण सुरक्षा के लिए कानून, वार्ताकार हैं ओम प्रकाश तिवारी।
3: हवा और भूमि एवं इन सबों के बीच के अंतर संबंधों जो मानवों, जन प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों तथा संपत्ति के बीच मौजूद है, वही पर्यावरण है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा। इसमें वायु, जल, पर्वत, पठार, घाटी, वन, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी का समावेश है, और वे सब मिलकर जो वातावरण तैयार करते हैं उसे पर्यावरण कहा जाता है। पेड़ पर्यावरण में कार्बन का संतुलन बनाए रखते हैं, वे अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बड़ा पेड़ प्रतिदिन औसतन 64 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और 304 ग्राम ऑक्सीजन निर्मित करता है। वहीं एक व्यक्ति को 839 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी 2 से 3 पेड़ हर व्यक्ति के लिए होने ही चाहिए। तो ऐसे अहम भाग अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मानव शरीर एवं उसके अंशों की सुरक्षा एवं संरक्षण महत्वपूर्ण है। आज देश में जितनी भी अंग्रेजी दवाइयां बन रही है, प्रत्येक दवा हमारी प्राकृतिक संपदाओं से ही बन रही है। पपीते के वृक्ष से चेचक की दवा बनती है, अर्जुन वृक्ष की छाल से हृदय रोग की दवा बनती है, यहाँ तक कि धतूरा, कनेल जैसे पौधों के फलों से अंग्रेजी दवाएं बन रही है। और अगर इन प्राकृतिक संपदाओं का नाश होता रहा तो एक दिन अंग्रेजी दवाओं की कंपनियां बंद हो जाएगी, और तब दवा के बिना मनुष्य चौक चौराहों पर तड़प तड़प कर मरता दिखेगा। हजरत लुकमान जैसे यूनानी वैद्य कहते थे कि प्रकृति में उपजे सभी पेड़ पौधे हमारे जीवन के रक्षक हैं, इसलिए तो भारत में इन वृक्षों की पूजा होती है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं ने विश्व भर में व्यापक रूप से जन समुदाय का ध्यान आकृष्ट किया है। धरती के तापमान में बढ़ोतरी या ओजोन की परत का क्षरण, एसिड वर्षा, सूखा या अकाल, बाढ़ या जन विप्लव, ईंधन की लकड़ी

0: और चारे की कमी, हवा और जल प्रदूषण, खतरनाक रसायनों और विकिरण जैसी समस्याओं के प्रति लोगों में दिन ब दिन जागरूकता एवं सक्रियता बढ़ती जा रही है। विश्व के अन्य देशों की तरह भारत ने भी पर्यावरण प्रदूषण के खतरों को महसूस किया। हम जिस वातावरण में जी रहे हैं उसके तीन प्रमुख घटक हैं, मिट्टी, जल और वायु, एवं एक संतुलित वातावरण में प्राणी को सांस लेने के लिए ताज़ा हवा, पीने के लिए शुद्ध पानी और रहने के लिए शोर शराबे से मुक्त शांत वातावरण चाहिए, जो आज दुर्लभ होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में भारत ने भी जीव जंतुओं की सुरक्षा एवं प्राकृतिक संतुलन के प्रति तत्परता दर्शाते हुए भारत के संविधान में 1976 में संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 के पश्चात 48 को जोड़ा, जिसके अनुसार पर्यावरण का संरक्षण, सुधार और वन जीवों की रक्षा राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसके सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा का संकल्प लिया। 1972 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण कानूनों पर नए सिरे से बल दिया जाने लगा। भारत में 1 नवंबर 1980 को पर्यावरण विभाग की अलग से स्थापना की गई। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण, भोपाल गैस त्रासदी ने केंद्र सरकार को पर्यावरण संबंधी कड़े उपाय करने के लिए नए कानून बनाने पर मजबूर कर दिया एवं अंततः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ, जो केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण और सुधार के सभी आवश्यक उपाय करने के अधिकार प्रदान करता है। हाल फिलहाल में पर्यावरण के संरक्षण तथा वनों के सुरक्षा से संबंधित विधिक अधिकारों के हनन के कारण संपत्तियों को कारित क्षति के लिए क्षतिपूर्ति एवं अनुतोष हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 दिनांक 20 जून 2010 से लागू हुआ। इन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम 1995 तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय अधिकरण 1997 को समाप्त किया गया। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है, जिसको सभी दीवानी मामलों को सुनने की अधिकारिता होगी, जिसमें पर्यावरण संबंधी कोई विवाद उत्पन्न है या जिसमें पर्यावरण संबंधी अधिकार विवादित है और जिसकी प्रक्रिया है कि विवाद उत्पन्न होने की तिथि से 6 मास के भीतर आवेदन किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त कारण होने पर निर्धारित अवधि अतिरिक्त 60 दिन की अतिरिक्त अवधि हेतु अनुमति दी जा सकेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा कम से कम 10 परंतु 20 से अधिक नहीं पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले होगा, पर सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। जल संरक्षण बोर्ड, वायु प्रदूषण बोर्ड या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण को की जा सकेगी, जो 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेगी। पर्यावरण या दुर्घटना क्षति के लिए प्रतिकर के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण बिना गलती के दायित्व के आधार पर करेगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश, निर्णय या पंचायत के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को होगी, जो 90 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। अधिकरण के आदेश या निर्णय का अनुपालन न किया जाने की दशा में 3 वर्ष के कारावास या 10 करोड़ रुपये अर्थदंड या दोनों में दंडित किया जा सकेगा एवं इसमें त्रुटि होने पर प्रतिदिन 25,000 रुपये की अतिरिक्त दंड देय होगा, जब तक उल्लंघन समाप्त न हो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभक्त करता है, हरा, नारंगी एवं लाल। हरे श्रेणी वाले उद्योग को बिना प्रदूषण वाला, नारंगी श्रेणी वाले उद्योग को कुछ पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के बाद अनुमति प्राप्त करना, पर लाल श्रेणी के उद्योगों को अत्यधिक प्रदूषण वाला उद्योग घोषित करना एवं उसे किसी भी हालत में उद्योग चलाने हेतु अनुमति न देना। इन्हीं प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री कुलदीप सिंह, जो ग्रीन जज के रूप में प्रसिद्ध हुए, ने 168 उद्योगों को दिल्ली में लाल उद्योग की श्रेणी में डाल दिया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के पारित होने के पश्चात प्रत्येक उद्योग चलाने वालों का उत्तरदायित्व बन गया है कि वह अपने उत्सर्जन और निसरण का स्तर सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार रखने के उपाय करें, अन्यथा उद्योग चलाने वाले और म्युनिसिपल अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है। नए उद्योग लगाने और वर्तमान उद्योग का विस्तार करने वालों को निर्माण कार्य शुरू करने के पहले प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना पड़ता है। बड़े बड़े उद्योगों को अपनी परियोजना की मंजूरी के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अर्थात EIA और पर्यावरण प्रबंध योजना अर्थात EMP भारत सरकार को प्रस्तुत करना होगा। पर्यावरण के प्रदूषण को लेकर संपूर्ण विश्व के लोग चिंतित हैं एवं इसे सामूहिक चिंतन एवं चिंता हेतु सांकेतिक रूप में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आज फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, प्लांट पैथोलॉजी, एक्वाकल्चर, इंटेमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट लॉ, MSc इन क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंटल इकोनॉमिक्स आदि फैकल्टी की पढ़ाई विश्वविद्यालयों में होने लगी है। अब समय आ गया है कि सरकार के साथ साथ हम भी पर्यावरण के प्रति सजग एवं सजीव हो जाएं, साथ ही पर्यावरण कानूनों के प्रति भी जागरूक हो जाएं।
1: कानून की बातें में आपने सुना ओम प्रकाश तिवारी से वार्ता। विषय था भारत में पर्यावरण सुरक्षा के लिए कानून। हमें उम्मीद है श्रोताओं, इस वार्ता के जरिए आपने भी यह जाना कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, साथ ही हम सब इस पर्यावरण को सुरक्षा रखने के लिए जागरूक होना जरूरी है और पेड़ लगाना तो अति आवश्यक है। तो श्रोताओं, अब आगे की जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले हम जानते हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन की सूचना, नाम और नंबर के साथ। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस। दोस्तों, ये ट्रेन ऑन टाइम रहने वाली है। इसका सही समय है 7:50। 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, ये अपने नियत समय 7:45 पर भागलपुर आएगी। 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये आपको ऑन टाइम मिलने वाली है। साथ ही इसका सही समय है 8:15। 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, दोस्तों ये अपने सही समय 8:05 से डीले चल रही है, 1:11। 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर, ये आपको ऑन टाइम मिलने वाली है। दोस्तों इसका सही समय है 8:37। रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसकी ट्रेन संख्या है 13403, ये अपने नियत समय 9:00 भागलपुर आएगी। 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमो, ये ऑन टाइम मिलने वाली है श्रोताओं। इसका सही समय है 9:15। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी, ये अपने नियत समय 9:35 पर भागलपुर आएगी। 13229 गोड्डा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, जो कि साप्ताहिकी ट्रेन है जो आज के दिन चलती है श्रोताओं, ये ऑन टाइम मिलने वाली है आपको। इसका सही समय है 10:15। 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये अपने नियत समय 11:55 पर भागलपुर से आगे के स्टेशनों के लिए प्रस्थान करेगी। तो ये थी भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन की सूचना, NTS पर आधारित। तो श्रोताओं, हमारी बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक साथियों, आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जिसे आप सुनते हैं हर रोज सुबह 7 बजे से 7:55 तक। तो साथियों, आइए अब जान लेते हैं मौसम का क्या हाल है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 9 से 13 मई के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। तो ये थे मौसम का हाल। और श्रोताओं, मौसम तो खुशनुमा सा है, तो आइए क्यों ना आनंद लेते हैं हम इस गीत के साथ मौसम का।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ ये गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा और साथ ही आप सब ने भी इंजॉय किया होगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि आज के इतिहास की क्या कुछ खास महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हैं। श्रोताओं, बात करें वर्ष 2005 की, तो आज ही के दिन मॉस्को में रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी सेना पर विजय की 60वीं वर्षगांठ के जलसों में भारत से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। 2008 वर्ष में आज ही के दिन अमेरिका ने पाकिस्तान को 8.1 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता देने से इनकार किया। वहीं बात करें वर्ष 2010 की, तो आज ही का दिन था जब भारत की वंदना शिवा को विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए वर्ष 2010 के सिडनी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया और उन्हें 4 नवंबर को सिडनी ओपेरा हाउस में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। श्रोताओं, आज के दिन कई व्यक्तियों का जन्म भी हुआ था। जैसे आज के इतिहास में भारत में वीरता और महान विभूतियों के जन्म के लिए विशेष है। आज के दिन 1540 में मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसी वर्ष आज के दिन 2014 में एन जनार्दन रेड्डी जी का जन्म हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। 1999 में आज ही के दिन करमश्री जेठाबाई सोमैया, जो भारतीय शिक्षाविद हैं, आज ही के दिन 1935 में स्नेहमयी चौधरी, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, वो प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री थे। 1930 में आज के दिन रविंद्रनाथ त्यागी, जो प्रसिद्ध भारतीय व्यंग्यकार और लेखक रह चुके हैं, इनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। वहीं वर्ष 1866 में आज के दिन गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे, इनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। वहीं जहादर शाह, जो 1661 वर्ष में, ये बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों में से एक थे, इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। जैसा कि हमने बताया कि 1540 में महाराणा प्रताप का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था, जो उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। साथ ही जन्म के साथ आज के दिन कई व्यक्तियों का निधन भी हुआ था। बात करें वर्ष 2014 की, तो एन जनार्दन रेड्डी जी का निधन आज ही के दिन हुआ था। वहीं 1999 में करमश्री जेठाबाई सोमैया का भी निधन आज के दिन हुआ था। वहीं राष्ट्रवादी हिंदी सेवा और आर्य समाजी रह चुके भवानी दयाल सन्यासी, 1959 वर्ष में इनका निधन हुआ था। वहीं आज ही के दिन 1986 में तेनजिंग नोर्गे, जो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर पहुंच

0: पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे। इनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का निधन भी आज ही के दिन वर्ष 1995 में हुआ। वहीं वर्ष 1998 की बात करें तो तलत महमूद जिनका जो प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक थे, इनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। श्रोताओं, हम आपसे और भी बातें करेंगे, बस लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: वेलकम बैक साथियों, आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जिसे आप सुनते हैं हर रोज सुबह के 7 बजे से 7:55 तक। तो श्रोताओं, आइए अब जान लेते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज क्या कुछ खास है। मौसम बदला हुआ है, शनिवार को 13 जिलों में आंधी बारिश के अलर्ट जारी किए गए। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर में बनेगा मेडिकल हब। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे शुभेंदु। आईपीएल में राजस्थान गुजरात के बीच आज मैच। अलियार्ड मेले में आकर्षण का केंद्र बने ममलेश्वर महादेव और नागकजौनी। पारंपरिक अलियार्ड जात्रा मेला श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर पहुंचे जयशंकर। आईटीआई मंडी ने जीती ओवरऑल ट्रॉफी। अगले 8 घंटे में 13 राज्यों में बारिश आंधी की चेतावनी। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद। श्रोताओं, आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700001424।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
0: वेलकम बैक साथियों। श्रोताओं, एक जरूरी सूचना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा माहवार सभी सुलहनीय वादों यथा मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा मामले, विभाजन दावे क्षति मामले, बंधुआ मजदूरी के मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, भूमि पट्टा मामले, भूमि के दाखिल खारिज का मामला, बैंक के अवैतनिक ऋण मामले, सेवानिवृत्ति लाभ के बकाया मामले, पारिवारिक न्यायालय के मामले, आपराधिक शमनीय वाद, दुर्घटना दावा, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, बिजली पानी राजस्व आदि मामलों के निष्पादन हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया गया है। इस लोक अदालत में दिनांक 9 मई 2026 को मामलों का निपटारा किया जाना है। इसके लिए व्यवहार न्यायालय भागलपुर, अनुमंडल न्यायालय कहलगांव तथा नगछिया परिसर के विधिक सेवा समिति के सचिव से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, सूचना तो हमने आपको सुना दी, तो आइए, एक अर्जियां है, आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत और आनंद लेते हैं आप सबके साथ इस गीत को।

इसी अर्जियों के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ श्रोताओं, ये गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा और सभी आप सभी इंजॉय किए होंगे इस गीत को। तो इसी कार्यक्रम में आज हम यहीं विदा लेते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है आकाशवाणी भागलपुर आदमपुर, हमारा पिन कोड नंबर है 812001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही, हमेशा खुश रहिए,

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और उर्दू समाचार।

0: और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जाँच करेगा। संदीपन दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन

0: एडापड्डी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक

पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में

0: का बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमेरिका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि हुर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया

0: में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से।

0: शुभेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बर्दारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाबात में फैसलाकुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इक़्तदार रियासतों के वज़ीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर आर.एन. रवि वज़ीर आला और नई काबीना के मेम्बरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लिमानी पार्टी के नौमंतखब लीडर शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाति बदरवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही एक कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरजी खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, जो रवींद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक़िद कराने को यकीनी बनाने के लिए हज़ारों पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नज़रियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी। तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ ये आया है कि IUML ने हुकूमत की तश्कील के लिए टीवीके को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफ बर्दारी की तकरीब जो आज मुनाकिद होनी है मुनाकिद नहीं होगी। प्रोफेसर कादिर महीउद्दीन की सरबराही वाली IUML ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिजागा वेत्री करगम को हिमायतनामा नहीं दिया है। एक और हैरानकुन वाकया यह है कि AMMK पार्टी के लीडर TTV दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायतनामा पेश किया है, जो मन्नार दुई से मुंतखबा वाहिद MLA हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीस्वामी को वजीर आला बनाने के हक में पेश किया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु में जहां 85% से ज़्यादा वोट डाले गए हैं, अभी तक नई हुकूमत और वज़ीर आला के तकरूर का इंतज़ार है। नई हुकूमत की तश्कील में इसलिए ताखीर हो गई है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी TVK भरपूर अक्सरियत 118 की तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्त VCK की तरफ से महज एक और हिमायतनामा मौसूल हुआ है, जिसे एक हतमी कदम माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास 2 अरकान असम्बली आ गए हैं, जिसके बाद ये तादाद 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सब्रमणी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी

0: क्लिप पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त मंत्रियों से कहा, अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों से अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और संबंधित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने को कहा है। पटना स्थित सचिवालय में मंत्रियों के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में श्री चौधरी ने यह निर्देश दिए। बैठक में विकसित भारत के संकल्प के साथ समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित अन्य विभागों के मंत्री उपस्थित थे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आज पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन करेंगे। यहां बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रमवाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य के सभी जिलों में आयोजित लोक अदालत में ट्रैफिक चालान संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
1: इसमें वैसे ई चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं की गई है और जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं किया गया है, ऐसे सभी मामलों में दिनांक जो 31/3/2026 तक लंबित है उनके निपटान के लिए लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है वह भी सरल

0: की गई है, इसमें भुगतान नगद या यूपीआई ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है। सभी जिलों में जो डीएसपी ट्रैफिक है उनको यह निर्देशित किया गया है कि आप लोक अदालत में अपने जिले अंतर्गत जो हो रहे वहां पर आप उपस्थित रहें अनिवार्य रूप से।
1: ट्रैफिक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पटना सहित विभिन्न जिलों में विशेष व्यवस्था की गई है। पटना में इन मामलों की सुनवाई ज्ञान भवन में की जाएगी। यहां मामलों के निष्पादन के लिए 25 बेंच का गठन किया गया है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना की स्थिति में प्रारंभिक जांच के बाद 24 घंटे के भीतर वाहन मालिकों को उनका वाहन सौंप दिया जाएगा। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया कि राज्य के किसी भी थाने में दुर्घटनाग्रस्त वाहन 24 घंटे के दौरान नहीं मिलने की स्थिति में मोबाइल नंबर 9031-829-356 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे 2174 शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया है। विभाग के अनुसार 18 मई को इन शिक्षकों की काउंसिलिंग होगी। अगर किसी कारण से निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग नहीं हो पाती है तो अगले दिन काउंसिलिंग की जाएगी। गौरतलब है कि विभाग के अनुसार बीपीएससी द्वारा परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए इस वर्ष फरवरी महीने में 6 से 11 तारीख तक तिथि निर्धारित की गई थी। विभिन्न कारण से इन शिक्षकों की काउंसिलिंग नहीं हो सकी थी। पटना स्थित IGIMS नर्सिंग कॉलेज में पिछले 48 घंटे से जारी नर्सिंग छात्राओं का आंदोलन समाप्त हो गया है। कॉलेज के उपनिदेशक सह प्रवक्ता डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन पर छात्राओं ने आंदोलन समाप्त कर दिया। वहीं इस घटना के बाद कॉलेज की उप प्रधानाचार्य रूपाश्री दास गुप्ता को अकादमिक कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी से हटा लिया गया है। श्री सिन्हा ने बताया कि छात्राओं के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए मौजूदा पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के लिए पेरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और राज्य में पहली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML के टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन खाने से 20 स्कूली बच्चों के बीमार होने की खबर पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इस संबंध में शिक्षा विभाग को पीएम पोषण योजना के समुचित अनुश्रवण और निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बीमार स्कूली बच्चों का समुचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
3: इधर आइए। इधर
4: इधर
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े

0: रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना,
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश की संभावना है। विभाग ने कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है।
4: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना, सारण, शेखपुरा एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
3: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, सारण, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके चलते आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। राजधानी पटना में भी कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात घंटों ठप हो गया। पटना जू में भी कई पेड़ गिर गए। प्रशासन ने गिरे पेड़ों को हटाने के लिए आज पटना जू को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इधर पटना जिला प्रशासन ने पेड़ गिरने या बिजली के तार टूटने की तत्काल सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9470001389 जारी किया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी, पानी और वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। पटना और वैशाली में 2-2 तथा आरा, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गृह विभाग ने छापेमारी में असहयोग के आरोप में कटिहार सदर 2 के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वे वर्तमान में जहानाबाद के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात हैं। इधर पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने गौनाहा थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नवादा जिले की साइबर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के कोनिया मोहल्ले से एक साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ठग के खाते से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई है। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सा कांटा मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 1028 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पटना की कृषि अनुसंधान परिषद में सतत कृषि हेतु संतुलित एवं पर्यावरण अनुकूल पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मृदा परीक्षण आधारित खेती, संतुलित

0: उर्वरक उपयोग और जैविक खाद अपनाने की जानकारी दी गई। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड मैदान स्थित कार्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम आज से स्वीडन में आयोजित पैरा स्विम ओपन फाल्कनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल हो रहे हैं। मधुबनी जिले के विस्पी प्रखंड के रथौस गांव निवासी शम्स 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले और 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी जापान में होने वाले आगामी एशियाई पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 11 मई से आयोजित की जाने वाली अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी के लिए बिहार पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन पर ताजपोशी शीर्षक से लिखा है, शुभेंदु संभालेंगे बंगाल की सत्ता। दैनिक जागरण लिखता है, मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड पर आतंकी कैमरा, जांच में जुटी एटीएस और एसटीएफ। प्रभात खबर का शीर्षक है, ठगी साइट तक पहुंचाने को सरकारी पोर्टलों का सहारा। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म, पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त मंत्रियों से कहा, अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वही ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 205.7 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं जब वी मेट फिल्म से। आवाज है शान और उस्ताद सुल्तान खान की।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। श्रोताओं, आपको सुनवा रहे हैं लव जन जुआ और सूजी क्यू की युगल आवाज में ये गीत फिल्म सिंग इज किंग से।

फिल्म संगीत में नगमे नए पुराने में अब आपको सुनवा रहे हैं अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर से सजाया है अतीफ असलम ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश में हम सुनवा रहे हैं आपको ताल फिल्म का यह गीत। आवाज है आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने यहीं संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज सुगम संगीत के गायक कलाकार हैं राजीव कुमार सिंह। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनिए सूरदास का लिखा ये भजन।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

अब सुनिए कबीरदास के लिखे इस भजन को।

सुगम संगीत संपन्न हुआ। आज सुगम संगीत में आपने सुना राजीव कुमार सिंह के गाए गीत और भजन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं दो रास्ते फिल्म से। आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

पुरानी फिल्मों से अगला गीत सुनिए। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाज में ये गीत फिल्म रोटी से।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुराने फिल्मों से। श्रोताओं, अब सुनिए हीर रांझा फिल्म का यह गीत, जिसे सुरों से सवारा है कविता कृष्णमूर्ति ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। आज लोकगीत के गायक कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार ठाकुर। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनिए लोक भजन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं लोकगीत।

लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज लोकगीत के गायक कलाकार थे वीरेंद्र कुमार ठाकुर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11:01 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के फ़ोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम फ़ोन इन आपकी पसंद। इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं सौरभ कुमार।

0: फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने मन पसंदीदा गानों की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में करवा सकते हैं। साथ ही आप अपनी फरमाइश प्रत्येक शनिवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुन सकते हैं। तो लेते हैं हम अपने पहले कॉलर को।
1: हेलो।
0: हाँ नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद परवेज आलम बोल रहा हूँ, ग्राम बगूरा धनकुंड से।
0: जी तो परवेज जी, आप करते क्या हैं?
1: मैं सेना में हूँ।
0: जी, तब तो काफी अच्छी बात है। और आप सेना में हैं तो ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका 1 साल पूरा हो चुका है और 10 तारीख को पूरा हो जाएगा, तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
1: ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा किया गया एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य था, जो देश को काफी गौरवान्वित किया और दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। जो पहलगाम में हमारे यात्रियों पे नकाबपोश होकर हमला किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय सेना।
0: जी जी, और ये दिन है हमारे सभी जो सैनिक है जो सीमाओं पे खड़े हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके शौर्य को याद करने का दिन है।
1: जी बिल्कुल
0: जी, और हम अपने तमाम श्रोताओं के माध्यम से सभी जो हमारे सैनिक हैं उन सभी को याद करते हैं, उनके शौर्य को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं।
1: जी,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे
1: हमें? वो सुना दीजिए, मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा।
0: जरूर जरूर, तो ये गाना आप खुद सुनेंगे या अपने दोस्तों साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: हम दोस्तों और साथियों के साथ ही सुनना चाहेंगे, और ये गाना डेडिकेटेड है जो जवान।
0: जी जी, सभी जवानों को आप जी जी, तो ठीक है, आपके तरफ से हम अपने सभी वीर जवानों को डेडिकेट करते हुए अपने सभी श्रोताओं को ये गाना जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: जी धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: धरिया गंगदोरी से सांदेव हरी बोल रहे हैं सर।
0: सांदेव जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हैं सर।
0: और क्या चल रहा है अभी?
1: अभी खेती बाड़ी चल रहा है सर।
0: तो आपने अभी क्या फसल लगाई है?
1: अभी मूंग लगाए हैं सर
0: जी। तब तो काफ़ी अच्छा है। और आपको बताना चाहेंगे कि अभी 10 तारीख को मदर्स डे मना रहे हैं, अपनी माँ को याद करने का दिन, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: इसके लिए तो होना ही चाहिए सर ना
0: जी। तो आप अपनी माँ को याद करते हैं?
1: जी।
0: तब तो काफ़ी अच्छी बात है। तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: संजोग फिल्म का
0: कौन सा गाना?
1: मुझे माँ पर गाना है सर
0: जी। ज़रूर ज़रूर। तो आपकी पसंद पे गाना हम ज़रूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: हम मुकेश कुमार सर बोल रहे हैं जबलपुर से।
0: नमस्कार मुकेश जी, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं सर, आप बताइए कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं जी, सब लोग अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है?
1: बस आपका कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे कि आज रिकॉर्डिंग है तो आज बात कर ले थोड़ा
0: जी। तो आपकी फोन लग गया है और आपको बताना चाहेंगे कि 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मना रहे हैं और यह दिन जो है परमाणु परीक्षण जो 1998 में 11 मई के दिन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके नेतृत्व में जो भारत ने किया था। और हाँ। जी, और आज एक और खास दिन है, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका एक साल पूरा हो चुका है और 10 तारीख को पूरा हो जाएगा। और आप जबलपुर से बोल रहे हैं, जबलपुर और आर्मी का जो कनेक्शन है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है।
1: 1942 का तो फैक्ट्री ही है सर।
0: नहीं, फैक्ट्री की ही बात नहीं है, इंडिया का रिजर्व कोर आपके पास है जबलपुर में।
1: हाँ
0: जी। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें और भी है जबलपुर में, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है जबलपुर एक मतलब अपने आप में उसकी एक पहचान है। जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज सुना दीजिएगा, फिल्म है हेरा फेरी।
0: जी, हेरा फेरी का कौन सा गाना?
1: महेंद्र कपूर और किशोर कुमार की आवाज में है। दरबार में ऊपर वाले के देरी है, अंधेर नहीं वक्त की हेरा फेरी है, ये गाना है, वो गाना सुना दीजिए।
0: जरूर जरूर, तो बताइए गाना आप खुद सुनेंगे या अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: ये गाना हम सभी आकाशवाणी के दोस्तों के साथ सुनेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो भी दोस्त हैं सभी के लिए रहेगा।
0: तो ठीक है, हम आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे और इस तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ठीक है सर, धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: परम आदरणीय सौरभ कुमार जी, सारा सप्रेम प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश के आदरणीय सौरभ कुमार साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी भागलपुर के माध्यम से।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो मई का महीना चल रहा है, ये महीना काफ़ी सारी जो इवेंट्स है वो इसमें है। और जैसे कि अभी है 11 मई जो आने वाली, उस दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे है।

0: और नेशनल टेक्नोलॉजी डे आप सभी जानते होंगे कि जो तकनीकी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं अपने उनके लिए मनाया जाता है। उसके बाद नर्स डे भी है, और जो नर्सिंग की जो हमारी महिलाएं हैं जो अपना इतना सेवा समर्पण का भाव देती है मरीजों को, उनकी जो कर्मठता है उसको भी याद करने का एक दिन है हमारा।
1: जी बिल्कुल सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी डे इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन परमाणु बम के परीक्षण किया गया था राजस्थान में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और उस दिन से ये दिन समर्पित कर दिया है टेक्नोलॉजी डे के रूप में। नेशनल रूप से हम मनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और नर्सिंग का जो नर्सों का योगदान है हमारे चिकित्सा जगत में वो तो अद्वितीय है, अपरिकल्पनीय है, और बहुत ही सम्मानीय ये जॉब होता है जिसकी वजह से हम स्वस्थ होते हैं और अपने आप को सुकून महसूस करते हैं स्वस्थ होकर।
0: जी बिल्कुल आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी इस मामले में, और आपको हम बताना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का भी एक साल पूरा हो गया है।
1: जी बिल्कुल 7 मई को जो हमने विजय प्राप्त की थी सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर और घुटनों को ला दिया था हमारे बहादुर सैनिकों ने, ये तो बहुत ही अद्वितीय है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। इतना मतलब विशाल का एक काम किया गया कि जिसकी कल्पना नहीं की सकती है कि मात्र 2 या 2.5 दिन के अंदर घुटने टिकवा दिए सत्र को।
0: जी बिल्कुल और ये दिन हमारे सैनिकों के शौर्य को याद करने का दिन है।
1: जी उनको मैं सत सत नमन और प्रणाम करता हूँ कि इतना अपने देश के जो बहादुर हैं जवान हैं उन्हें हमें गर्व होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मानवर जैसा आपने बताया है कि टेक्नोलॉजी डे है और साथ में ऑपरेशन सिंदूर है, नर्स डे है, और साथ में आपको याद दिला रहा हूँ कि 10 मई को हम मातृ दिवस मना रहे हैं, मदर डे मना रहे हैं।
0: जी बिल्कुल
1: और इस दिन हमारे जो माता है उनको सम्मान दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। माताएं तो सदैव आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है, और उनको जितना भी ऊंचा स्थान दिया जाए ऐसा लगता है कि बहुत कम है।
0: जी बिल्कुल
1: और आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मदर डे के अवसर पर कोई प्यारा सा खूबसूरत गीत भागलपुर आकाशवाणी से प्रसारित कीजिए सभी सम्मानित श्रोताओं के लिए।
0: जरूर तो ये देश भी हमारी माँ है और ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है, तो हम आपको इससे रिलेटेड एक गाना सुनाएंगे, और ये गाना आप खुद सुनेंगे या अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी मैं अपने परम मित्र शरद कुमार साहब को याद करते हुए याद करना चाहता हूँ, अविनाश जी, आशुतोष जी, गोकुल वर्मा और राजू यादव को, इन सभी दोस्तों को, साथ साथ में आकाशवाणी भागलपुर सुन रहे सभी श्रोताओं को शरद समर्पित करता हूँ। और ये प्यारा सा खूबसूरत गीत देश के सभी माताओं को और अपनी मातृभूमि को, जवानों को शरद समर्पित करता हूँ।
0: जी तो आपकी पसंद पे ये खूबसूरत सा गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिए।
1: जी हृदय।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: गांधी पार्क मंतुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर जी।
0: जी जी, और आपको कहना चाहेंगे कि 8 मई
1: जी,
0: यानी आज 8 मई है और 8 मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है
1: जी।
0: जी, और ये जो बीमारी है इसके बारे में आपने सुना होगा।
1: बिल्कुल सर
0: जी, और थैलेसीमिया बीमारी के जो लोग इससे पीड़ित हैं उनको याद करने का ये दिवस है
1: जी। जी,
0: जी, और साथ ही साथ आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 वर्ष पूरा भी हो गया है
1: जी। बिल्कुल
0: जी, तो आप सभी श्रोता मित्रों के साथ हम सभी जवानों के शौर्य को याद करते हुए उन्होंने जो काम किया है उसी 1 साल पहले उसको हम लोग याद कर रहे हैं आज के दिन
1: जी। जी बिल्कुल सर
0: जी। जी तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर जी आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा 2 अक्टूबर।
0: 2 अक्टूबर जी।
1: जी उसमें गाना है चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा।
0: जी तो ये गाना आप खुद सुनेंगे या अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, हमारे कहें कि पहले तो हमारे जो परिवहन जन है उनके नाम दे दूं, जैसे भैया मंची नामदेव, माँ के नामदेव, राहुल नामदेव, शिवम नामदेव, भासु ममता और समस्त नामदेव परिवार, और हमारे जितने भी श्रोता हैं इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सबके लिए गाना डेडिकेट रहे।
0: जी तो ठीक है, आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जालपुर एमपी के अशोक सिंह
0: जी। अशोक जी, क्या कर रहे हैं अभी आप?
1: बस गाने ही सुन रहा हूँ, रेडियो से सुन रहा हूँ, लगा हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है। और आपको कहना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा एक साल हो गया और आप जबलपुर से हैं।

0: जी, तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
1: यही है कि सर सैनिकों का जितना सम्मान के लिए जिन्होंने अपने अमर शहीद हुए तो उनका बदला लिया था, तो बहुत उनको सम्मान से पूर्वक उनका सम्मान करना चाहिए जितने भी हैं फौजी लोग।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिन है हमारा जो हमारे दुश्मनों ने हमारे साथ जो चैलेंज दिया था उसका भी हमने जो मुकाबला किया है, और एक शौर्य दिवस की तरह से एक दिन है।
1: जी
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: यही सुना दीजिए बाबू पिक्चर का ये हवा मेरे संग चल।
0: क्या बात है, तो ये गाना आप खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: आप और सभी सुनने वाले श्रोताओं के साथ
0: जी जी जी, तो ठीक है, तो आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह हमें कॉल करते रहिएगा।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, जय बजरंग रेडी के श्रोता संग बस स्टैंड बंडा विलेज से मैंने कुछ चाय वाले बोल रहा सर, चाय पी लो।
0: जी जी, जरूर जरूर। और आपने सुबह सुबह चाय की बात की है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोग चाय का आनंद लेंगे। और हाँ, आपसे हम कहना चाहेंगे कि ये मई महीना चल रहा है, गर्मी भी प्रचंड बढ़ रही है धीरे धीरे, और बीच में बारिश होने काफ़ी अच्छी से मतलब अपने दस्तक दी थी और काफ़ी आनंद में हम व्यतीत कर रहे थे, लेकिन फिर गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग आज ऑपरेशन सिंदूर एक साल हो गया है और अच्छा, काफ़ी जगह जवानों के इस शौर्य को लोग याद कर रहे हैं। और 16 मई जो आने वाले उस दिन है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। डेंगू के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये मच्छरों से फैलने वाली काफ़ी खतरनाक बीमारी है। डेंगू के वायरस 4 तरह के होते हैं, उसका 4 अलग अलग स्ट्रेन है, Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3, Dengue 4। तो अलग अलग स्ट्रेन में अलग अलग होता है, और एक डेंगू होने पे लोगों को डॉक्टर के पास जाकर उनकी उचित सलाह लेनी चाहिए। और भीषण गर्मी का जो मौसम होता है इसमें अगर डेंगू होता है तो आपको बहुत ही एहतियात बरतना होता है, क्योंकि कभी कभी डेंगू जो होता है जानलेवा हो सकती है। तो जैसे भी आपको डेंगू का लक्षण लगे, उसके कुछ लक्षण हैं, आप तुरंत सतर्क हो जाएं और सीधे डॉक्टर के पास जाएं, अपने से उसका इलाज ना करें। जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज गाना सुनवा दी, पिक्चर है आँख का पिक्चर।
0: कौन सा गाना?
1: इसका कोई भी सुनवा देना, आँख का पिक्चर का।
0: आँखें पिक्चर नई वाली या पुराने वाली?
1: नई वाली।
0: जी, अक्षय कुमार वाले जो फिल्म है नई वाली। जी, तो गाना खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: आज हमारे दोस्त रहेंगे गजराज लोधी और मांगीलाल चंद्र, बसंत कटारी, सवारी हमारे तवारी जी है, सब दोस्त हैं।
0: जी, तो ठीक है, आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ठीक है सर, नमस्कार।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर, हम नारायणपुर से मिथुन कुमार साहब बोल रहे हैं।
0: मिथुन जी, काफी दिनों बाद फोन किया है आपने, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर, बारिश का मौसम चल रहा है।
0: क्या बात है,
1: मौसम है अभी।
0: जरूर जरूर, और आपको बताएंगे कि 10 मई को ना इस बार मदर्स डे है, अपनी माँ का दिन जो बोलते हैं, और सभी लोग इस दिन अपनी माँ को जो प्रेम करते हैं उसको दिखाने का ये दिन है। तो सभी लोग अपने मम्मी जो भी है, माँ जो है, उसको सम्मान हम लोग प्रकट करते हैं। और बताइए कि अभी पुल जो टूट गया है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी? बहुत
1: बहुत सर दिक्कत हो रही है सर।
0: जी जी जी, हम आशा करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इसका पुनः चालू करे ताकि लोगों को सुविधा हो। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मेरी माँ बड़ा जो गाना है ना वो।
0: जी, तो गाना खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे, सबसे पहले आप आकाशवाणी पूरे परिवार के लिए।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और उसके बाद मेरे दोस्त हैं वो।
0: तो ठीक है, आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: ओके सर।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है, यानी वक्त है आपसे विदा लेने का। पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि फोन इन आपकी पसंद की रिकॉर्डिंग आप प्रत्येक शुक्रवार को 11:30 से 12 बजे के बीच में करवा सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शनिवार को 11:00 से 12:00 बजे के बीच में किया जाएगा। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता यानी मुझे सौरभ कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद। इस कार्यक्रम को आज आपके लिए पेश कर रहे थे सौरभ कुमार। इस कार्यक्रम को प्रसारित किया गया आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र के द्वारा। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

नमस्कार बहनों, नारी लोक के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी सहेली मुनमुन। बहनों, आपको अपने बचपन के दिन याद हैं, जब सुबह की शुरुआत होती थी चिड़ियों की चहचहाट के साथ। चारों ओर पक्षियों का कलरव, आंगन और छत की मुंडेरों पर गौरैयों का झुंड। मैना याद है आपको, कैसे आंगन या चबूतरे पर बैठी चहचहाती थी, आज दिखती ही नहीं है। आज सुबह जब हमने खिड़की खोली तो दिखाई और सुनाई पड़ा केवल वाहन और उनके शोर। इस भीड़ और प्रदूषण ने छीन लिया है उन नन्ही नन्ही चिड़ियों का कलरव। हमारी दादी नानी जब हमें खाना खिलाती थी तो उनका नाम लेकर एक एक कौर मुंह में डालती जाती थी। आज ना तो वो मैना है और ना वो गौरैया। प्रत्येक वर्ष प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। बहनों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस में कला का हमेशा से गहरा महत्व रहा है। वर्ष 2026 में भी ये उत्सव का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। इस वर्ष हमने 7 प्रवासी पक्षी प्रजातियों को चुना है ताकि ये दिखाया जा सके कि सामुदायिक विज्ञान किस प्रकार इन पक्षियों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है और उनके संरक्षण में सहयोग करता है। बहनों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की शुरुआत 2006 में अफ्रीकी यूरेशियन प्रवासी जल पक्षियों के संरक्षण पर समझौते के सचिवालय द्वारा प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के सहयोग से की गई थी। पक्षियों का प्रवास एक प्राकृतिक चमत्कार है। प्रवासी पक्षी भोजन, प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण के लिए सर्वोत्तम पारिस्थितिक परिस्थितियों और आवासों की तलाश में सैकड़ों हजारों किलोमीटर की उड़ान भरते हैं। जब प्रजनन स्थलों पर परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तो वे बेहतर परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की ओर उड़ान भरते हैं। बहनों, प्रवास एक जोखिम भरी यात्रा है। इसमें अनेक प्रकार के खतरे शामिल होते हैं जो अक्सर मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं। शहरी विस्तार और मानव निर्मित वातावरण यदि उचित प्रबंध ना किया जाए तो इन पक्षियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे उनके आवास नष्ट होते हैं। इमारतों और कांच से टकराकर होने वाली घातक दुर्घटनाओं जैसे जोखिम बढ़ जाते हैं। सतत शहरी विकास के लिए बेहतर योजना बनाकर जो शहरी फैलाव और आवास विनाश से बचाती है, साथ ही आप अपने आसपास की मदद से हर कोई पक्षियों की रक्षा कर सकता है। प्रकृति को अपने शहरों में वापस लाकर और मिलकर काम करके नागरिक और निर्वाचित अधिकारी समान रूप से हमारे प्राकृतिक वातावरण की रक्षा कर सकते हैं और जैव विविधता पर शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव को भी कम कर सकते हैं, पक्षी अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। बहनों, बातें आगे भी हैं, उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, आज एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन भी है जिन्हें पशु पक्षियों से काफी प्रेम था। हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। बहनों, ये जयंती ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 मई को मनाई जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बंगाली कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने के 25वें दिन मनाई जाती है। तो इस अनुसार आज गुरुदेव रविंद्रनाथ की जयंती है। बहनों, ये मात्र संयोग ही है कि रविंद्रनाथ की जयंती और प्रवासी पक्षी दिवस दोनों एक ही दिन है। बहनों, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ जी केवल उत्कृष्ट साहित्यकार ही नहीं, बल्कि एक प्रकृति प्रेमी भी थे। उनकी कविताओं, कहानियों और दर्शन में उनका पक्षी प्रेम सहज ही दिख जाता है। उनके लिए पक्षी केवल जीव नहीं, स्वतंत्रता, गीत और आत्मा की अभिव्यक्ति के प्रतीक थे। टैगोर पक्षियों को आजादी के प्रतीक के रूप में देखते थे। उन्होंने अक्सर पिंजरे में बंद पक्षियों की तुलना खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षियों से की है। वे पक्षियों को जीवन, प्रेम, प्रकृति के बारे में दार्शनिक विचारों को व्यक्त करने के लिए करते थे। इनकी कविताओं में पक्षी अक्सर खिड़की पर आते, गाते हैं और

फिर उड़ जाते हैं, जो जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाता है। टैगोर का पक्षी प्रेम उनके गहन मानवतावाद और प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। जहां पक्षियों की स्वतंत्र उड़ान मानवीय आत्मा की आकांक्षा का प्रतीक है, रविंद्रनाथ टैगोर एक रचनात्मक वातावरण में पले बढ़े और कम उम्र से ही कविताएं और कहानियां प्रकाशित करने लगे। कठोर शिक्षा प्रणाली को नापसंद करते हुए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां प्रकृति के करीब रहकर शिक्षा प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया। उनकी कविता विशेष रूप से गीतांजलि को विश्व स्तर पर प्रशंसा मिली। टैगोर ने कई प्रतिष्ठित उपन्यास, निबंध और 2000 से अधिक गीत लिखे, जिन्हें सामूहिक रूप से रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। सद्भाव, मानवता और कलात्मक स्वतंत्रता पर उनके जोर ने उन्हें भारत के महानतम व्यक्तित्वों में से एक बना दिया। उनकी दूरदृष्टि विश्व स्तर पर कला और शिक्षा को आकार देती है। बहनों, इस चर्चा के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही बहनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है वार्ता। विषय है माँ की बदलती भूमिका। वार्ताकार हैं पूजा झा।
1: माँ की बदलती भूमिका। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाहित है। माँ केवल एक संबंध नहीं वरन एक भावना है, एक संस्था है, एक संसार है। भारतीय संस्कृति में माँ को देवी का दर्जा दिया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। माँ की ममता, उसका त्याग, उसका प्रेम, ये सब अतुलनीय है। किंतु आज के आधुनिक युग में माँ की भूमिका केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं, समय के साथ साथ माँ की भूमिका भी बदलती जा रही है। वह अब केवल ममतामयी माँ नहीं बल्कि एक शिक्षिका, एक मित्र, एक पथ प्रदर्शक, एक प्रबंधक और एक कर्मयोगी की भी भूमिका निभा रही है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, यह एक गहरी सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक क्रांति है। माँ ने सदियों के सफर में अपने आप को ढाला है, फिर भी अपने मूल स्वभाव प्रेम, त्याग, समर्पण को बनाए रखा है। प्राचीन काल में हमारे समाज में माँ की भूमिका मुख्य रूप से घर परिवार तक ही सीमित थी। वह परिवार की धुरी थी। वेदों में माँ को अंबिका कहा गया है, अर्थात वह जो सबकी रक्षा करती है। मनु स्मृति में कहा गया है, 10 उपाध्यायों से एक आचार्य, 100 आचार्यों से एक पिता और 1000 पिता से भी माँ का गौरव अधिक है। परंपरागत रूप से माँ घर गृहस्थी की संचालक थी। भोजन बनाना, घर की साफ सफाई करना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, ये सब उसके मुख्य कार्य थे। वह प्रातःकाल सबसे पहले उठती और रात को सबसे बाद में सोती थी। उसका अपना कोई समय नहीं था, वह पूरी तरह परिवार के लिए ही समर्पित थी। माँ ही परिवार में संस्कारों, परंपराओं और मूल्यों की संरक्षक होती थी। बच्चे का पहला विद्यालय माँ की गोद ही होती है। वह व्रत त्यौहार मनाकर, धार्मिक कथाएं सुनाकर और नैतिक मूल्यों को सिखाकर बच्चों का विकास करती है। प्रारंभ में वह आर्थिक रूप से भले ही पुरुष पर निर्भर रहती थी, किंतु आत्मिक रूप से वह परिवार की सबसे बड़ी शक्ति थी। आधुनिक युग में शिक्षा, तकनीक, सामाजिक जागरूकता और आर्थिक स्वतंत्रता ने माँ की भूमिका को पूरी तरह बदल दिया है। आज की माँ बहुआयामी है। वह सुबह बच्चों का टिफिन बनाती है, उन्हें स्कूल छोड़ती है, दफ्तर जाती है, शाम को घर आकर बच्चों का गृह कार्य देखती है। यह सब वह बिना शिकायत के, बिना थके करते ही रहती है। अब एकल परिवार के बढ़ते चलन ने माँ की जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया है। अब ना नानी दादी का सहारा, ना ही बड़े परिवार की मदद है। हर निर्णय, हर समस्या माँ को अकेले ही सुलझानी होती है।

फिर भी वह हारती नहीं है, टूटती नहीं है, क्योंकि माँ का हौसला अटूट होता है। किसी विद्वान ने कहा था, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को

स्तर ऊंचा होता है वहाँ शिशु मृत्यु दर कम होती है और परिवार ज़्यादा खुशहाल होता है। एक शिक्षित माँ अपने बच्चों को न केवल पाठ्य पुस्तकों की शिक्षा देती है बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाती है। वह बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करती है, उसके प्रश्नों का उत्तर देती है और उसके सपनों को भी पंख लगाती है। आधुनिक जीवन में जब तनाव, एकाकीपन और मानसिक दबाव बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में एक माँ की भावनात्मक भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आज के युग में बच्चे परीक्षा, करियर, सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा के बीच पिसते जा रहे हैं। माँ एक मनोचिकित्सक की तरह बिना किसी डिग्री के अपने बच्चों की मानसिक देखभाल करती है। उसका स्पर्श, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान, ये सब किसी भी दवा से ज़्यादा असरदार होता है। आज के डिजिटल युग में माँ की भूमिका और भी जटिल हो गई है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब बच्चों की दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं और एक माँ को इन सब से निपटना होता है। माँ को आज बच्चों की डिजिटल दुनिया पर भी नज़र रखनी होती है। आज की माँ बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करती है, जिससे बच्चे अपने मन की बातें, डर और खुशियाँ खुलकर साझा कर पाते हैं। यह खुला संवाद बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज की आधुनिक माताओं के लिए यहाँ कुछ व्यवहारिक सुझाव हैं। जैसे आज की माताएं निसंदेह बहुत ही व्यस्त हैं, पर बच्चों के साथ दिन के कुछ घंटे पूरी तरह उनके ऊपर ध्यान देते हुए बिताएं, चाहे एक घंटे हो, दो घंटे हो या उससे अधिक, जिसमें फ़ोन या दूरदर्शन का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो। बच्चों के सामने फ़ोन का सीमित उपयोग करें, क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता आदर्श होते हैं और वे उनके व्यवहार की नकल करते हैं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बच्चों पर हमेशा ही सबसे आगे रहने का दबाव रहता है। एक माँ के रूप में उन्हें यह जरूर सिखाएं कि हारना बुरा नहीं है, बल्कि हार मान लेना बुरा है। उन्हें मानसिक रूप से जरूर मजबूत बनाएं। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। अपनी सेहत के लिए कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि यदि माँ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगी, तभी वह अपने बच्चों को भी सकारात्मक ऊर्जा दे पाएगी। आधुनिक माँ की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वह घर में लैंगिक समानता की भी नींव रखे। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना परोसना, सफाई, केवल बेटियों को ही नहीं बल्कि बेटों को भी सिखाएं। सबसे बड़ी बात कि हर बच्चा अपने आप में अद्वितीय होता है। अपने बच्चों की तुलना कभी भी दूसरे बच्चों या उनके भाई बहनों से कभी भी ना करें। उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। निष्कर्षतः, समय के साथ माँ की भूमिका चाहे जितनी भी बदल जाए, उसका मूल स्वभाव प्रेम, त्याग, समर्पण और ममता का गुण कभी नहीं बदलता है। भविष्य की माँ की भूमिका असाधारण है और उसकी चुनौतियाँ भी असाधारण हैं। आज जरूरत है कि हम माँ को केवल त्याग और समर्पण की मूर्ति के रूप में ना देखें, बल्कि उसे एक संपूर्ण मानव के रूप में सम्मान

0: ध्यान दें उसके सपनों को, उसकी इच्छाओं को, उसके दर्द को भी पहचानें। आज 21वीं सदी में खड़ी भविष्य की माँ एक ओर परंपरा की वाहक है तो दूसरी ओर आधुनिकता की प्रतिनिधि भी। उसके कंधों पर जितनी जिम्मेदारियां हैं उतनी ही कठिन चुनौतियां भी हैं। आज की माँ को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक ज्ञान देने की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। साथ ही बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाते हुए तकनीक का सही उपयोग सिखाना भी उसका कर्तव्य है। संस्कृति, परंपरा और नैतिकता की रक्षा एक माँ ही कर सकती है। वस्तुतः माँ की भूमिका युगों युगों से महान रही है और आगे भी रहेगी, परंतु आज जरूरत है कि हम माँ को केवल पूजनीय ही ना बनाएं, बल्कि उसे सम्मान, सहयोग और स्वतंत्रता भी दें। एक सशक्त, सुखी और जागरूक माँ ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकती हैं। हम सबका दायित्व है कि हम माँ की इस यात्रा में उसका साथ दें, उसकी भावनाओं को समझें, उसकी जरूरतों का ध्यान रखें, उसके सपनों को सम्मान दें, क्योंकि केवल माँ जन्म देने वाली ही नहीं बल्कि एक बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की धुरी होती है, जो उसे एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बनाने में मदद करती है। माँ की भूमिका तभी सफल हो सकती है जबकि उनके बच्चे भी अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर लें।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। विषय था माँ की बदलती भूमिका। वार्ताकार थी पूजा झा। इसके साथ ही बहनों, आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है नारी लोक अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी सहेली मुनमुन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी लोक। प्रसारण आपके सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको पंडित जसराज का गायन सुनवा रहे हैं राग मियाँ की तोड़ी में।

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में पंडित जसराज का गायन सुन रहे थे, राग मियां की तोड़ी में। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं गौतम कुमार मंडल। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं गौतम कुमार मंडल। इनके गाए लोकगीत आप एक बार फिर हमारे ही केंद्र से सुनेंगे 1:20 पर प्रादेशिक समाचार के बाद। प्रादेशिक समाचार के लिए आइए शामिल होते हैं रांची के प्रसारण सभा में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: तुथे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बनाई 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी। भोजपुरी, मगही और अंगिका पर जल्द होगा फैसला। प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह शांत करने की कवायद तेज। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और पूर्व सांसद धीरज साहू ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से की लंबी चर्चा। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही पर एजेंसियों का टेंडर होगा रद्द। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सभी निकायों को दिए निर्देश। और रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा के सतगावा में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बंगला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल R.N. रवि ने शुभेंदु के अलावा 4 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्र पाल, अशोक कीर्तनिया और निशित प्रमाणिक के नाम शामिल हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने विसंगतियों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार को शामिल किया गया है। झारखंड की राजनीति में गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान के बीच विधायक सरयू राय के बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव दिया है कि वे कांग्रेस माइनस सरकार बनाने पर विचार करें। उन्होंने तर्क दिया कि इससे सरकार की कार्यप्रणाली और छवि में सुधार हो सकता है।
1: मैंने उनसे जिक्र किया कि सुना है कि आप भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं। उन्होंने इनकार किया और कहा कि मीडिया में कई तरह से बातें आ जाती। मैंने कहा कि एक विकल्प उन्होंने भी सुझाया है, विचार करें। तो उन्होंने कहा कि अभी तो यथा स्थिति जैसी है वही बढ़िया से चले, हम सभी की कोशिश है।
0: हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि फिलहाल राज्य सरकार में किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में गठबंधन पूरी तरह एकजुट है।
2: सलाह मानने वाला व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मुफ्त की सलाह ठीक नहीं होती, या सलाह कोई दिया है उसको अभी रिजर्व रखते हुए काम करना है। हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं और जिस बात को लेकर सरकार बनी है वो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को केंद्रीय बिंदु में रख के सरकार बनी।
0: कानून व्यवस्था के सवाल पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सत्ताधारी दल झामुमो ने स्पष्ट किया है कि हेमंत सरकार अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं देती है और कानून अपना काम पूरी सख्ती से कर रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश ठाकुर ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान की सक्रियता पर कहा कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
3: झारखंड में जीरो टॉलरेंस की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार है, ये बहुत दिन तक ऐसे अपराधी बच नहीं पाएंगे और जब पुलिस के शिकंजे में आएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। ये अपराधियों को संरक्षण देना तो ये भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में होगा, ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों में होगा। अब इतना दिन नहीं खराब आ गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इंडिया गठबंधन का कि अपराधियों को संरक्षण दे।
0: झारखंड कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को शांत करने की कवायद तेज हो गई है। पूर्व सांसद धीरज साहू और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कल रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पार्टी के कुछ फैसलों से वे आहत जरूर हैं, लेकिन संगठन के हित में 18 मई तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी बात पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू के समक्ष विस्तार से रखेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिनों तक चलने वाले इस उच्च स्तरीय शैक्षणिक समागम में देश के लगभग 200 प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ और सैन्य क्षेत्र के डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन आर्मी हॉस्पिटल और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी नगर निकायों को गर्मी के दौरान निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को न केवल दंडित किया जाएगा बल्कि उनका अनुबंध भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बैठक में जल मीनारों की मरम्मत, होल्डिंग टैक्स वसूली और बस स्टैंडों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने शहरों में कचरा उठाव और साफ सफाई की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए सामुदायिक भवनों के निर्माण में तेजी लाने को कहा। लौह नगरी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 3 गाड़ियां बरामद की हैं। एएसपी ऋषभ त्रिवेदी ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह गिरोह सुनसान जगहों पर गाड़ियों के पार्ट्स अलग कर उन्हें बेचने का धंधा करता था।
4: तो मुख्य अभियुक्त 4 पकड़े गए, हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। चोरी करके ये लोग गाड़ी का पुर्जा तोड़ते थे कि गाड़ी का वो कभी हैंडल निकालेंगे, कभी पहिया निकालेंगे। यही हम लोगों ने जब उनसे कड़ी पूछताछ की तो यह पता चला कि वो गाड़ी के जो पुर्जे निकालते थे उसको कई सारे पुर्जों में बेचा जाता है।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,500 रुपए है जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपए प्रति किलो है। कोडरमा के सतगावा में कल देर रात वज्रपात से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। लोहे की खिड़की के जरिए बिजली के कमरे के अंदर गिर जाने से यह हादसा हुआ। इधर मौसम विभाग ने आज रांची, हजारीबाग और बोकारो समेत 5 जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेटेड भाषा विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बनाई 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी। भोजपुरी, मगही और अंगिका पर जल्द होगा फैसला। प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह शांत करने की कवायद तेज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व सांसद धीरज साहू ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से की लंबी चर्चा। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही पर एजेंसियों का टेंडर होगा रद्द। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सभी निकायों को दिए निर्देश। और रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा के सतगावा में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग का शेष भाग। कलाकार हैं गौतम कुमार मंडल। इस भाग में आइए सबसे पहले सुनते हैं इनसे ये शिव भजन।

आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार थे गौतम कुमार मंडल। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक संताली पत्रिका कार्यक्रम जियो झरना। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

जीवन झरना कार्यक्रम आंजम का जो पेड़ा को इन सोनी हंसदा जोहार। वैसे दो रोज दिन गी गोगो वा दिन तहन कना। मेनखान अबो वा जीवन रे उनिया योगदान मानोत लगी अबो मदर्स डे से गोगो को वा दिन बुन मनावदा। नुवा गोगो को लगी सम्मान परब कना। अपना घरों जरन लगी लगातार प्रयास लगी नुवा अबू रेन गोगो को सराहा बुन इमा कुआ। दिला तबे नीत अपनार गोगो तको सराहा बुन इमाओ कुआ। गोगो आर बाबा घरंज रन होड़ आर गाती को तिहिं आबू मीटांग अडी स्पेशल दिन मनाव लगी बुन जरवा वकना। उना दो मदर्स डे कना। निये दिन आबू वा जीवन रे सेल्फलेस दुलड़ एमो अनी आर देखभाल अनी गोगो सम्मान एमाय लगी कना।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग।
6: आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम संताली पत्रिका, कार्यक्रम जीवन झरना। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के पिकरेट परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1,10,000 से अधिक परिवारों के 21,500 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का निपटारा किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,84,000 से अधिक परिवारों के लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा हो रहा है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित

लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालतों में बैंक ऋण, बिजलीबाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रमवाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जा रहे हैं। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई हो रही है। 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग पीठों का गठन किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे अधिक 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास, सारण और सिवान जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किए जाने की मांग को लेकर कल पटना में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में 5000 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थियों पर ट्रैफिक बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बड़हड़वा फतेह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लग जाने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। घटना में 2 अन्य घायल हो गए। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को हरे रंग में डुबोकर बेचने के वायरल हुए वीडियो के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने महिला विक्रेता समेत 9 महिला हॉकरों को गिरफ्तार किया है। आईआईटी पटना परिसर में क्रिकेट खेलते समय करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाक़दा एक तकरीब में मग़रबी बंगाल में बीजेपी के पहले वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लिया। वज़ीर आला के साथ साथ 5 काबीना वज़रा ने भी हलफ लिया। गवर्नर R.N. रवि ने वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ साथ कई मरकज़ी वज़रा और बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के ज़ेरे इक़्तदार रियासतों के वज़राए आला भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजारत ख़जाना ने कहा है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ की इन स्कीमों का मकसद तमाम लोगों, ख़ास तौर पर माशरे के महरूम और कमज़ोर तबक़ात को सस्ती माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से ज़ायद रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ अफराद शामिल हो चुके हैं। अटल

0: पेंशन योजना में 9 करोड़ रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुका है। श्रीमती सीतारमन ने मजीद कहा कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 10,10,000 से ज़ायद खानदानों के 21,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के क्लेम्स निपटाए जा चुके हैं। वजीर ख़जाना ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,84,000 से ज़ायद ख़ानदानों के तकरीबन 3,660 करोड़ रुपए के दावों की अदायगी की जा चुकी है। पटना हाई कोर्ट समेत रियासत की सभी अदालतों में आज कौमी लोक अदालत का इनाकाद किया जा रहा है। लोक अदालत में बाहमी समझौते की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के सिविल और बाज़ किस्म के क्रिमिनल मामलात का तस्फिया किया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने आज पटना सिविल कोर्ट कम्प्लेक्स में मुनाकिद लोक अदालत का इफ्तिताह किया। लोक अदालतों में बैंक लोन, बिजली के तनाज़ात, गाड़ियों के हादसात का बीमा और लेबर तनाज़ात जैसे मामलात बाहमी रजामंदी की बुनियाद पर हल किए जा रहे हैं। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से मुतालका मामलों की भी समाअत हो रही है। 90 दिन से ज़्यादा पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलात की समाअत के लिए एक इलाहदा बेंच तश्कील दी गई है। मगरबी हवा के असर से रियासत में गुज़श्ता एक हफ्ते से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि आज भी रियासत के बेशतर हिस्सों में तेज़ हवा के साथ बारिश का इम्कान है। औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास, सारण और सीवान अजला में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग जारी की गई है। इस हवाले से रेड अलर्ट जारी किया गया है। असातिज़ा तकर्री के चौथे मरहले के इम्तहान का इश्तहार जल्द शाया करने के मुतालबे को लेकर कल पटना में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे के मामले में 5,000 तलबा के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। गांधी मैदान के थाना इंचार्ज अखिलेश मिश्रा ने बताया कि इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उम्मीदवारों पर ट्रैफिक में खलल डालने, नज्म व नस्क को बिगाड़ने और पुलिस अहलकारों के साथ बदसलूकी करने का इल्ज़ाम है। मशरकी चंपारण ज़िला के ढाका ब्लॉक के तहत बड़हरवा फतह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लगने से 2 बच्चे समेत 3 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को सब्ज़ रंग में डुबोकर बेचने की वायरल वीडियो के मामले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने खातून फरोश समेत 9 खवातीन हॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पटना IIT पटना के कैंपस में क्रिकेट खेलते हुए करंट लगने से एक तालिब इल्म की मौत हो गई। हलाक होने वाला तालिब इल्म मुंबई का रहने वाला है। वैशाली ज़िला के महनार जंदाहा मेन रोड पर योगी बाबा स्थान के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान होने वाले तसादुम में एक नौजवान जहाँ बहक हो गया जबकि दूसरा नौजवान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
3: खंधम धम त्रिशूल गाड़ के प्रलयकारी गति से भिन्न खेल

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: अमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। अमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिबो।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ

0: राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोबि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता

0: प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, क्षमा करेंगे मोहम्मद अजीज़, और इस जानकी के युगल आवाज़ों में फिल्म आखिरी रास्ता का ये गीत।

0: करेंगे।
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में सुनिए फिल्म आरती का गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: चित्रपट से कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हेमलता की आवाज़ में फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के रूप में आइए सुनते हैं फिल्म आप आई बहार आई फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

0: अंत में लीजिए सुनिए अभिनेत्री फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में।
1: हंसो मत, बोलो।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत। कलाकार हैं टूंगर राम भाट और साथी। आइए इनसे सुनते हैं कुछ मांड।

आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको राजस्थानी लोक संगीत सुनवाया। कलाकार थे डूंगर राम भट्ट और साथी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। नीचे सुनिए देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और FM के 110.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 हो चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इसके लिए आइए शामिल होते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
0: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
0: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
0: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
0: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
0: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाडे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: अरे डाक गांव में बट जानी चाहिए थी।
1: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
0: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
1: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
0: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
1: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गुड़ बात करना खूब जानते हो।
0: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे, मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
1: मनी ऑर्डर हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
0: कौन है वो सैनिक?
1: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
0: मेरा डुप्लीकेट?
1: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
0: कौन है वो?
1: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
0: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
1: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
0: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
1: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
0: क्या कह रहे हैं आप पोस्ट मास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
1: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
0: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
1: ये लो ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई सिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो, हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है साले, लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई सिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला, जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कह रहे, अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झप

0: करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
2: श्रृंगारम, श्रृंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
2: अरे कुछ मत पूछो दोस्त,
1: क्यों
2: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
2: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
2: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
3: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
4: कहिए क्या बात है। कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी।
3: अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
4: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
4: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम श्रृंगारम है।
4: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
4: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
4: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम श्रृंगारम को नहीं जानते। जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना।
4: वरना क्या होगा?
5: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ हाँ रुपए लाओ लाओ लाओ।
4: श्रृंगारम ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
5: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ।

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माताजी प्रणाम।
1: अरे तुम्हारी आवाज

0: आज भी कुमार स्वामी जैसे ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह भगवान की कैसी लीला है। अच्छा आगे बढ़ो बेटा।
1: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
0: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
1: ऐसा न कहिए माँ जी। निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
0: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
1: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
0: बेटा ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
1: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
0: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती
1: हैं। माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
0: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
1: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
0: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
1: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
0: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ आओगे ना बेटा?
1: आऊंगा माँ जी।

0: अरे अरे अरे, जरा देखकर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारा? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जी जी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम
0: अरे, अरे अरे अरे नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जी जी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसे?

0: की बातें कर रही हो दीदी, भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुदकारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा ये ले पानी। और अब
0: जी जी इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा, कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है यार।
0: अच्छा अच्छा अच्छा बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है। अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़ी ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो और
0: मुझे घर जाना है। नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है?
3: देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है। तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा?
3: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकूंगी।
2: अच्छा, ये बात है?
0: छोड़ दे, छोड़
4: दे। चल बन गया, तुझे मैं छोड़ दबा डालूंगा।

0: अरे मार डाला रे, डालिए रे, मार डाला। अरे बताओ बताओ।
1: यहाँ कोई नहीं बताएगा तुझे। दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
0: अरे बकवास बंद करो डाकिये, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तू हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
1: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चलो हाल उधर कर दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
0: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
2: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
3: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
2: जी इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
3: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
2: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
3: हाँ हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
2: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
3: ओह तो तुम्हारी माँ नहीं है?
2: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
3: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
2: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
3: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
2: अरे अरे बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
3: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब ओह पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला, मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
4: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
3: माँ जी आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
4: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
3: अरे ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
4: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
3: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर

0: बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे पीएस कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: ओ, ओ, ओ, ओ पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
2: क्या बात है,
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
3: जी,
2: तो हम तब से बात शुरू करें
3: जी,
2: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
3: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
2: जी,
3: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
2: हाँ।
3: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था।

0: प्रभाकर पणशीकर जी है,
1: जी।
0: राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: वाह।
0: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
1: हाँ।
0: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके,
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
1: हाँ।
0: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, पमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह।
0: जी,
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी दादी?
0: पहला शो 1975 14 अप्रैल,
1: जी,
0: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है।
0: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
0: मुहूर्त माना, तो
1: क्या बात
0: हमारे
1: है।
0: एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं, अच्छे
1: हाँ।
0: दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है,
1: जी
0: गुड़ी
1: जी
0: पाड़वा।
1: क्या बात है।
0: जी,
1: ये सिलसिला शुरू हुआ, मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
0: हाँ,
1: हैं।
0: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था। वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
1: जी
0: मन्नादा
1: जी
0: के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा सांगा कुणा से, वो जो गाना है
1: जी
0: मुझे देखते ही पप्पा सांगा, छोटे बच्चे भी पप्पा सांगा कुणा से। मुझे याद है, छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी,
1: जी
0: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी, 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोना चाहिए, ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे
1: अच्छा
0: बोली
1: अच्छा
0: तुम तो मेरे लिए गाओगी? तो बोला हाँ
1: ओ,
0: जरूर गाओगी।
1: क्या बात है।
0: बहुत मजा आया उस
1: वाह
0: दिन,
1: वाह।
0: बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फेहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको
0: बनाई
1: याद
0: थी,
1: है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
1: जी
0: क्या अजीब दास्तां है ये,
1: हाँ हाँ
0: इस तरह
1: हाँ
0: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल। तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने
0: हाँ जी,
1: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
0: हाँ जी
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
0: जी
1: आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है,
0: राइट।
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
1: हाँ।
0: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
1: ओह, क्या बात
0: आई
1: है।
0: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
1: अलग अलग
0: गाना।
1: गायिकाओं ने अलग अलग
0: हाँ,
1: मौके पे इसे
0: ऐसे मैं
1: गाया है।
0: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
1: हाँ
0: अलग अलग
1: हाँ
0: गायिकाओं के गाने हुए,
1: जी
0: उसकी
1: जी
0: झलक
1: हाँ
0: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: उर्मिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव में
1: हमारे रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: जैसे सब चाल थे सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए पापड़ बेलना सब
0: मिलकर के
1: सब मिलकर काम करते थे, बहुत मजा आता था। लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था और सब सब गणपति दिवाली सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं, बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को,
0: जी जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी जी।
1: गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा,
1: संगीत शारदा।
0: जी जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी।
0: हाँ।
1: तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के
0: ये महिला विश्वविद्यालय,
1: महिला नहीं वो स्कूल की बात कर रही हूँ, महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
0: अच्छा,
1: बाकी
0: अच्छा,
1: फ्रेंड्स वगैरह थे।
0: हाँ,
1: बहुत मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
0: क्या बात है,
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर जरूर।

0: वाह वाह क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती
1: पुरुष पर, तो पुरुष की अगर थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं, और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी।
2: हाँ जी।
1: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक न्यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटे सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म डिवीजन भी चालू है नहीं पता। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
1: हाँ।
2: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
1: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है।
1: हाँ।
2: और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
1: हाँ।
2: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
1: जी
2: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
1: हाँ।
2: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
1: वो
2: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
1: हाँ।
2: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है।
1: हाँ।
2: कि जाओ कि नहीं, तो उस तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी।
1: अच्छा।
2: बच्चों को।
1: हाँ।
2: तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
1: वाह।
2: और फिर एमए किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
2: हाँ, तलत साहब के साथ, एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब मेंबर थे। तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने, चली प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या? हमने चलेगी,
1: दौड़ेगी,
2: कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला। 3 महीने का वो टूर था हमारा।
1: क्या बात।
2: और 2 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
1: हाँ हाँ।
2: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है,
1: जी जी,
2: उनका वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा वहां जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछ, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके। अच्छा। गाने ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को आपने याद किया, तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
2: मराठी में गाने थे।
1: जी जी।

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: पहले वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ,
1: तलत साहब के साथ गए।
0: हाँ।
1: फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार।
0: हाँ हाँ।
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ हाँ।
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए। तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ।
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं और

0: मोर होता था,
1: अच्छा,
0: दम मारो दम। तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
1: जी जी।
0: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
1: अच्छा।
0: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस किया उनको
1: जी जी।
0: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सर, सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है, इधर उधर इधर सब घूमते हैं, बहुत अस्वस्थ रहते थे
1: जी जी।
0: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए छुट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि आपने तीन चार गाने गा के ये लोगों सामने से सुनते बैठू, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे में। रफी साहब को
1: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ?
0: ड्यूएट नहीं गाया,
1: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ
1: क्योंकि ये क्या है वो
0: मतलब
1: दूसरों के,
0: टीका टिप्पणी की आप जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह ये है कि लोगों की टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: ओ हो
1: खड़ा होना, गाने गाना,

0: फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें
1: जी, जी।
0: तो ये जिनको मालूम नहीं कि इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां है
1: जी।
0: तो लोग क्या, हाँ हाँ वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
1: अच्छा
0: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी। हाँ। लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
1: जी।
0: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अच्छा। कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस
1: अच्छा।
0: जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए
1: हाँ,
0: थे
1: हाँ, हाँ।
0: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला वो रिक्शा हो तो एक गाना में गाओ ना साथ में।
1: अच्छा।
0: मेरी सब सहेलियां मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ मैं गाने गा के भेजती हूँ रोज सुबह, मेरा ये काम होता
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
1: सोशल मीडिया
0: तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
1: क्या
0: हूँ।
1: बात है।
0: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
1: हाँ।
0: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो।
1: हाँ।
0: वो प्रमिला दादा का गाना लगता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में उन, मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
1: जी,
0: पहले
1: जी,
0: गाने,
1: जी।
0: अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक
1: हाँ,
0: तक
1: हाँ,
0: जाती।
1: हाँ।
0: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना,
1: बराबर
0: थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
1: जी
0: क्लासिकल
1: जी
0: म्यूजिक का।
1: हाँ
0: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
1: जी
0: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा। करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
1: ओहो
0: हारमोनियम पे सिर्फ
1: क्या बात है।
0: भेजे।
1: अच्छा
0: कभी
1: अच्छा
0: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
1: जी
0: साथ
1: जी
0: गाए,
1: जी
0: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
1: जी
0: मुझे भी
1: जी
0: अच्छा लगता
1: हाँ। तो
0: है।
1: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
0: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
1: अच्छा अच्छा
0: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका
1: हाँ हाँ
0: याग्निक का
1: अच्छा।
0: मोह मोह के धागे,
1: मोमो के धागे, दम लगा कर हैशा, इस फिल्म का
0: दम लगा
1: गाना
0: के
1: है
0: हैशा
1: जी
0: उसका
1: जी ये
0: पे।
1: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
0: हाँ,
1: हारमोनियम पे,
0: मोह मोह के है
1: तो
0: और
1: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: है, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: तरह से
0: है, ये
1: गाती थी
0: आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: या
0: क्या? आप
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं किया
1: मिमिक्री
0: आपने?
1: नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी गीता
0: हाँ,
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद है
0: आशा जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से,
0: जी,
1: तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता
1: नकल, नकल करने के हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट्य, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कोई,
1: जाके फिर वो आवाज
0: बिल्कुल
1: डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई
1: है।
0: है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी बिल्कुल
1: हूँ
0: बिल्कुल, अनुभव
1: क्योंकि
0: आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: नहीं होना
0: हाँ
1: चाहिए, कुछ सीखो अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है, नहीं तो एक ही
0: बिल्कुल
1: लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: सही,
1: सारे निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते
1: चौड़े
0: हैं,
1: में
0: क्या बात है। तालीम बहुत जरूरी है,
1: जी,
0: क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, वो जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले से नहीं तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट, मैं
0: हाँ
1: अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है,
0: जी
1: समझो
0: जी
1: वैरायटीज वो
0: हाँ
1: करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल ना नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है, और
0: हाँ
1: वो हिसाब से बहुत जरूरी है, आवाज
0: बिल्कुल,
1: अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ हाँ
1: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी
0: खैर बिल्कुल सही।
1: नहीं तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गंवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे गाते थे
0: सही बात,
1: ना
0: बिल्कुल सही। मन्नता की बात करते हैं,
1: जी,
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
1: मन्नादा के
0: किया,
1: साथ, हाँ
0: संगीतकार थे श्री
1: श्री
0: रामचंद्र,
1: रामचंद्र,
0: तो मन्नादा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
1: एक शो किया बड़ौदा में,
0: अच्छा
1: हाँ बड़ौदा
0: हाँ
1: में, मन्नादा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
0: हाँ हाँ
1: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है,
0: जी जी
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो
0: हाँ
1: फ्लैट लगेगा और उस
0: जी जी
1: भाव नहीं आएंगे उसमें,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है किसी के आवाज में, तो मैंने मन्नादा को पूछा कि मन्नादा ये कैसा लाने का अपनी आवाज में,
0: हाँ
1: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसे आघात करते जाओ, और
0: अच्छा,
1: मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब
0: ओह
1: रियाज करके,
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा, फिर भी उन्होंने

0: भी बोला
1: हाँ
0: कि ज्यादा नहीं करना,
1: हाँ
0: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज में. बहुत ही
1: अच्छा
0: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
1: हाँ
0: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
1: जी जी
0: बाम्बू चा वना च ज झ बहुत से बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी
1: हाँ
0: येशील सजणे सजणे
1: हाँ
0: माझाच पाठी.
1: बिल्कुल,
0: ये
1: उनके
0: लाइन
1: लिए
0: थी
1: टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत
1: रहा
0: बहुत, तीन बार
1: होगा.
0: हुआ ठीक, चार बार हुआ इतने बार. या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा. अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ. तो
1: जी जी
0: उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं वो
1: हाँ हाँ
0: उनको
1: हाँ
0: बराबर ये
1: नुक्ता लगा
0: करके
1: के.
0: लाइन
1: क्यों
0: में.
1: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दें हमें.
0: हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी जी
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 द दिस मॉड्यूलेशन
1: हाँ हाँ
0: फोर कि उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है.
1: जी जी जी
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर

0: at the house of the bamboo door. Number 54, the house of the bamboo door.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: सुनकर तो क्या.
1: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
0: जी जी जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है.
0: हाँ.
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने जिनको कहा जाए, जो लाइट कम और क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने.
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
1: बहुत से.
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उसमें बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
1: वाह,
0: बहुत अच्छे. थोड़ा सुना दो.

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो भी एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के आ जाता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा
0: लिखावटी
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा है, पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालू?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है।
0: जी जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी जी
1: हाँ,
0: हंसते
1: जख्म,
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल, वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब भी उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए उनके, 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त के रेजर वेजर कुछ नहीं था, स्ट्रेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अभी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि वह सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ। उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था। तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे। तो ऐसे सब होके भी उन्होंने ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: वो
2: दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी,
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कॉम्पिटिशन में भाग लिए, फिर इस प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे उनका साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए। तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़ कर, तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह,
2: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात, परिवार की बात चली है तो आपकी अगली पीढ़ी में
2: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा।
2: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्तव्य में कंट्रोल्स कर रही हूँ।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों। तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए।
1: बचपन से ही उन्होंने आपको उन्होंने गाते
2: देखा, तो उन्होंने
1: तो वो भी गाती आप...
2: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि
1: कशा
2: क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात,
2: बड़ी बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा।

0: कॉम्प्लीमेंट,
1: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट
0: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा? आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा।
1: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलम चपलम उस पे डाल भी होता था मेरे शो में, ऐसे सब डुएट दो गाने हम लोग ने। तो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे। हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरे ने लिया वो पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद
0: आया। यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं?
1: अरे बापरे।
0: रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से पहले।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
0: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान
2: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के

0: अहंकार।
1: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
0: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
3: सुनिए,
4: कहिए,
5: सुनिए एक खुशखबरी।
4: कहिए ना,
5: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज एवं FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आइए शामिल होते हैं युवा वर्ग के दैनिक कार्यक्रम युववाणी के साथ।

0: युवा वाणी सुनने वाले सभी नए एवं पुराने दोस्तों को आपके मित्र समर दुबे का प्यार भरा नमस्कार। आशा है कि आप सब पहले की तरह मस्त और व्यस्त होंगे। तो साथियों, युवा वाणी तो आप सुनते ही होंगे, और अगर नहीं सुनते तो सुनने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में लाते हैं आपके पसंद की सारी विषयों से जुड़ी रोचक और लोकप्रिय तथ्यों को, वो भी बिल्कुल अनोखे अंदाज में। तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को। आज के युवा वाणी में हम चर्चा करेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर, और इसके आगे हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप जी के जन्मदिवस पर। इसके बाद हर दिन की तरह डेली ट्रिविया होगा, जहां हम आपसे पूछेंगे रेडियो से जुड़े प्रश्न, जिसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। इसके आगे आज का विशेष स्तंभ भावगीत होगा, जिसमें हम आपको आज सुनाएंगे पक्षियों के चहचहाट में छुपी उस भावना को जो शायद हम समझ नहीं पाते। साथ ही इसके बीच गीत संगीत भी जारी रहेगा, और अंत में हमेशा की तरह समसामयिकी में हाल फिलहाल की घटनाओं से रूबरू कराएंगे। प्यारे साथियों, आशा है कि आप सब मुझसे जुड़ चुके होंगे। आइए अब चलते हैं आज के चर्चा की ओर। साथियों, हमारे ग्रह पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों में पक्षी सबसे शानदार हैं। वे जीवंत, मधुर, संगीत से सराबोर और चटक रंगों से परिपूर्ण होते हैं। प्रवासी पक्षी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमने पक्षियों का उपयोग उनके पंखों के लिए, पालतू जानवर के रूप में और यहाँ तक कि भोजन के रूप में भी किया है। यह दिवस हर साल मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। साथियों, यह दिन पूरी दुनिया में प्रवासी पक्षियों के महत्व और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। यह दिन उन लंबी यात्राओं का जश्न मनाता है जो ये पक्षी करते हैं। कुछ पक्षी तो हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, और उन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मित्रों, कम से कम 4000 प्रजातियों के पक्षी नियमित रूप से प्रवास करते हैं, जो विश्व में पक्षियों की कुल संख्या का लगभग 40% है। पक्षी प्रवास के दौरान बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बार हेडेड गीज सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले प्रवासी पक्षी हैं। आर्कटिक टर्न पक्षी दुनिया के किसी भी पक्षी की तुलना में सबसे लंबी दूरी तय करता है। काले रंग की टोपी और लाल चोंच वाले ये पक्षी 1,00,000 साल में 49,700 मील से अधिक की उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस केवल एक दिन ही नहीं, एक दिन का उत्सव नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे शहरों, हमारे पार्कों और हमारे घरों में भी प्रकृति के लिए जगह बनानी चाहिए। यदि हम यह जिम्मेदारी निभाएं तो हम न केवल पक्षियों को बचा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी प्रकृति के साथ संतुलित और सुंदर बना सकते हैं। साथियों, यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रवासी पक्षी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग हैं, और उनकी रक्षा करना हमारा साझा उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने इस रोचक चर्चा को देते हैं विराम, और अब अपने चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे महाराणा प्रताप जी के जन्मदिवस पर। साथियों, महाराणा प्रताप की जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन यानी इस वर्ष ग्रेगोरियन पंचांग के अनुसार 9 मई को मनाई जाएगी। वे एक महान योद्धा थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के समक्ष कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। प्रत्येक वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती पूरे देश में गर्व के साथ मनाई जाती है। महाराणा प्रताप जयंती महान योद्धा की वीरता और नेतृत्व को सम्मान देने के लिए मनाई जाती है। इन दिनों देश भर के लोग महाराणा प्रताप के मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए किए गए अथक संघर्ष, विशेषकर हल्दी घाटी के युद्ध में उनके साहस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समारोहों में प्रार्थनाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और चर्चाएं शामिल होती हैं, जो उनकी अमर भावना और जुझारूपन की विरासत को उजागर करती है। साथियों, महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजा थे, जिनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। बचपन से उन्हें युद्ध कला, तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति का प्रशिक्षण दिया गया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1572 में वे मेवाड़ के शासक बने, जहां कई राजपूत शासकों ने मुगलों के साथ गठबंधन किया। वहीं महाराणा प्रताप ने प्रतिरोध का कठिन मार्ग चुना। मित्रों, महाराणा प्रताप न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि अपनी असाधारण शक्ति के लिए भी जाने जाते थे। वे 2 तलवारें धारण करते थे, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 20 से 25 किलोग्राम था। उनके कवच का वजन लगभग 72 किलोग्राम और उनके भाले का वजन लगभग 30 किलोग्राम होता था। कुल मिलाकर वे युद्ध में लगभग 208 किलोग्राम भार वहन करते थे। उनकी तलवार और कवच अब उदयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में प्रदर्शित है। ये भारी हथियार उनकी शक्ति और योद्धा भावना को प्रदर्शित करती है। उनकी विरासत न केवल इतिहास की किताबों में बल्कि उनके तलवार जैसे भौतिक प्रतीकों में भी जीवित है। साथियों, उनकी जन्मभूमि उदयपुर में हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग गर्व के साथ उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। महाराणा प्रताप जयंती महज एक उत्सव नहीं है, यह वीरता, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति प्रेम का स्मरण दिलाता है। प्रत्येक भारतीय, विशेषकर युवाओं को उनकी विरासत से सीख लेनी चाहिए। मित्रों, इसी के साथ अपने इस रोचक चर्चाओं की कड़ी को देते हैं विराम और अब बारी है डेली ट्रिविया में प्रश्न पूछने का। तो डेली ट्रिविया में आज का हमारा प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और अब समय हो चला है छोटे से अंतराल का, तब तक के लिए आप कहीं जाइएगा मत क्योंकि हम जल्दी वापस आएंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है साथियों आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में। हमसे दोबारा जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और अब हम आपको आज के विशेष स्तंभ भावगीत में सुनाएंगे पक्षियों के चहचहाट में छुपी उस भावना को जो शायद हम समझ नहीं पाते। प्रकृति में पक्षियों का विशेष महत्व है। वे न केवल हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं बल्कि हमें अपनी मधुर आवाजों और सुंदर उड़ानों से

भी प्रदान करते हैं। पुराने समय में पक्षी स्वतंत्रता का प्रतीक माने जाते थे, परंतु आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में मानव की गतिविधियों ने उनके जीवन को अत्यंत कठिन बना दिया है। पक्षियों की भावनाएं भी हमारे जैसी होती हैं, वे प्रेम, डर, चिंता और मातृत्व की भावनाओं को अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, माता पक्षी अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, और जब उनका बच्चा किसी खतरे में होता है तो वे अत्यधिक तनाव में आ जाती हैं। इंसानी गतिविधियों के कारण उनका यह जीवन कठिन और असुरक्षित हो गया है।

जंगलों और वृक्षों की कटाई से पक्षियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। उनका बसेरा छिन जाने के कारण वे खाने और सुरक्षित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हवा, पानी और ध्वनि प्रदूषण ने पक्षियों की सेहत को प्रभावित किया है। ध्वनि प्रदूषण

से उनके संचार में बाधा आती है और प्रदूषित पानी से उनकी पीढ़ियाँ कमजोर हो रही हैं। पंछी अक्सर अपनी चू चू ची ची की आवाज़ से हमें ये बताने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि हम एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं, जो कि मानव समाज का सबसे बड़ा भ्रम है। हम इतने पर भी नहीं थमे, हम उन पंछियों को जाल लगाकर पकड़ते हैं। इससे उनकी संख्या घट रही है और कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। तेजी से बढ़ती शहरी जीवन शैली ने पक्षियों के लिए प्रकृति जगह कम कर दी हैं। इमारतों और सड़कों ने उनके उड़ने के रास्ते रोक रखे हैं। हम इंसानों को भले ही ये गतिविधि विकास लगे, पर सच तो ये है कि ये वास्तव में विनाश है।

दोस्तों, आजकल पक्षियों के जीवन में भय और असुरक्षा के भाव साफ दिखाई देते हैं। उनके लिए भोजन ढूंढना, आश्रय सुरक्षित करना और शिकारियों से बचना पहले से कई अधिक कठिन हो गया है। हमें यह समझना होगा कि यदि हम पक्षियों का जीवन खतरे में हमारे पक्षियों का जीवन यदि खतरे में रहेगा तो पूरे पर्यावरण और मानव जीवन पर भी इसका गंभीर असर पड़ेगा। हमें पक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना, पक्षियों के लिए पानी और भोजन का इंतजाम करना और अवैध शिकार पर रोक लगाना आवश्यक है। जब हम पक्षियों के प्रति संवेदनशील होंगे, तभी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा।

साथियों, और आइए अब समसामयिकी में रूबरू होते हैं बीते कुछ दिनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं से। प्रत्येक वर्ष 8 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, नर्सों और राहत कर्मियों को समर्पित होता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी और संकट के समय लोगों की मदद करते हैं। दुनिया भर में एक बार फिर से एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक वायरस चर्चा में आ गया है। हाल ही में एक डच क्रूज शिप पर हंटा वायरस संक्रमण के चलते 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यह जहाज केप वर्डे के पास 3 मई को पहुंचा, जहां कई नागरिक सवार थे। भारत में बागवानी के क्षेत्र में अंगूर एक महत्वपूर्ण फल फसल है। इसका उपयोग ताजे फूल के रूप में ही नहीं बल्कि जूस, किशमिश और मिठाई बनाने के काम में किया जाता है। ऐसे में यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भारत में अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक शहर कौन सा है, जिसका जवाब है नासिक, जिसे भारत का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी

0: के रूप में रोहित जैन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति की स्वीकृति के बाद की गई है और इसका कार्यकाल 3 मई 2026 से प्रभावी हो चुका है। साथियों, आज के समसामयिकी में अब बस इतना ही। उम्मीद है यह आपके प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए लाभप्रद होता होगा। दोस्तों, और अब समय हो चला है आज के डेली ट्रिविया में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो हमारा सवाल था, विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जिसका जवाब है 13 फरवरी। साथियों, और अब बारी है फन फैक्ट का, जिसमें हम आपको बताते हैं रेडियो से जुड़े कुछ मजेदार तथ्य। क्या आप जानते हैं रेडियो तरंगों के पीछे जितना आप सोचते हैं उससे कई अधिक वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं? शोधकर्ताओं ने इनके बारे में 2 रोचक तथ्य खोजे हैं। पहला, ऐसा माना जाता है कि जब तक कोई वस्तु इन्हें अवशोषित नहीं कर लेती, ये तरंगे अनंत काल तक यात्रा करती रहेंगी। यदि ऐसा है तो ये पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड के अन्य भागों में भी जीवन के अन्य रूपों में मौजूद हैं। तो संभव है कि यह अन्य ग्रहों पर भी हमारी रेडियो तरंगे को सुना जा सकता है। दोस्तों, शायद ये फन फैक्ट हम में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हम आशा करते हैं कि आज के इस मजेदार स्तंभ फन फैक्ट को जानकर आपको बहुत आनंद आया होगा। प्यारे श्रोताओं, आज का युवान कार्यक्रम आपको कैसा लगा? ईमेल या पत्र द्वारा हमें जरूर सूचित करें, क्योंकि आपके ही प्रतिक्रिया से हम आगे का कार्यक्रम और बेहतर प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करेंगे। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड 8120001। हमारा ईमेल एड्रेस है phair@bhagalpur@gmail.com। दोस्तों, हमारा साथ अब बस यहीं तक। स्टूडियो की घड़ी में अब हमारे जाने का वक्त हो चला है। उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और दीजिए अपने दोस्त समर को इजाजत। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे युवा वर्ग का कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और मिथुन की आवाजों में गाया ये गाना। फिल्म का नाम है वनवास, गीत है सईद कादरी का और धुन बनाई है मिथुन ने।

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में सुनिए फिल्म मिशन मजनू का ये गाना। गीत है शब्बीर अहमद का और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भागलपुर से फिल्म संगीत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं एनिमल फिल्म का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। सिद्धार्थ गरिमा का लिखा गीत है और श्रेयस पुराणिक का संगीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: मिस्टर एंड मिसेस माही इस फिल्म का गाना सुनिए, जुबिन नौटियाल की आवाज में।

0: उसे तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। समय हो चला है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत सुनिए आज की सभा के शेष एवं कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। इसमें आप रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट सुनेंगे। साथ ही माखन प्रसाद शर्मा की पूर्व प्रसारित वार्ता सुनेंगे, वनों का महत्व और संरक्षण। खेती गृहस्थी में मूंग की खेती, क्षमा करें, खेती गृहस्थी में आप लीची के बाग की देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर संजय सहाय की पूर्व प्रसारित वार्ता सुनेंगे। 7:10 पर लोकगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे गोपाल भगत। 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुरलहरी, कलाकार होंगे सुशील ठाकुर। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात 9:30 पर संस्कृति भारती कार्यक्रम और 10 बजे संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम का प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और आपको जानकारियां कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी सभा आरंभ होगी प्रातः 5:50 पर। 5:55 पर आप सुनते हैं खेत खलिहान कार्यक्रम। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत का आनंद लेंगे कार्यक्रम वंदना में। स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर विनय शरण से ली गई भेंटवार्ता, विषय होगा अपेंडिक्स फटना कारण बचाओ। प्रसारण समय होगा प्रातः 6:35। इस भेंटवार्ता में बातचीत करेंगे सचिन कुमार। 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। 7 बजे हमारा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम होगा गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रसरंग, कलाकार होंगे अभय कुमार सुमन। साथ ही मौसम का मिजाज जानेंगे, रेल सूचनाओं से अवगत होंगे, समाचार पत्रों की सुर्खियों से भी रूबरू होंगे और जानेंगे आज का इतिहास। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे 7:20 पर हिंदी वार्ता में जयकरण कुमार की वार्ता, सामाजिक जीवन में पुस्तकालय की उपयोगिता। 7:30 पर आप फिल्म संगीत का आनंद लेंगे। फिल्म संगीत आप आगे भी सुनेंगे 9:06 पर नगमे नए पुराने। 9:30 पर बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम होगा बाल मंजूषा, प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। 10 बजे आप प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे बाल किलकारी। 10:30 पर लोकगीत कार्यक्रम में आप मिथिलेश महाराणा को सुन सकते हैं। 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गुलदस्ता। 12 बजे विज्ञान वाणी कार्यक्रम सुनेंगे, सर सहयोग होगा पीयूष आनंद का और प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 12:30

पर सुरसंगम कार्यक्रम में श्रीमती गिरजा देवी का गायन सुनेंगे राग जौनपुरी में। 1 बजे लोकरंग कार्यक्रम में उदय कुमार के गाए लोकगीत सुनेंगे। 1:30 पर अंगिका पत्रिका कार्यक्रम होगा अंग दर्पण। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 3 बजे सामुदायिक गान एवं शिक्षा पाठ आप सुनेंगे और 3:20 पर देशभक्ति गीत सुनेंगे। 3:25 से शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे युवा वर्ग का कार्यक्रम होगा युववाणी, प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुनेंगे, इसमें चांदनी कुमारी की वार्ता सुनेंगे मातृ दिवस माँ जीवन की पहली धुन अंतिम शरण। 7:10 पर लोकगीत कार्यक्रम में गायिका होंगी वीणा देवी। 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुरलहरी, कलाकार होंगे राजीव कुमार झा। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 9:30 पर आप फिल्म संगीत सुनेंगे। रात्रि 10 बजे रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कलाकार होंगे विद्वान श्री डी श्रीवास्तव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत आज की इस सभा के शेष एवं कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को शंकर का नमस्कार।
1: सभी श्रोताओं को पूरो का भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शंकर भाई।
0: नमस्कार पूरो भाई, कैसे हैं, क्या हाल चाल है?
1: सब बढ़िया है। आपसे तो खैर बहुत दिन के बाद ही भेंट मुलाकात हो रही है। और सब खेती बाड़ी कैसा चल रहा है?
0: बस सब अच्छा है। देखिए अभी समय जो है मूंग बुआई का चल रहा है।
1: हाँ एकदम एकदम।
0: गेहूं चना ये मटर ये सब जो है लगभग तैयार हो ही गया है। अब भंडारण का समय है
1: जी।
0: लेकिन ये मौसम देख रहे हैं
1: एकदम शंकर भाई, मौसम ही तो
0: है कि अब सूखा है, थोड़ा बीज रख लें तो
1: थोड़ा पानी पड़ गया,
0: बस पानी पड़ जाता है।
1: ये मौसम का तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कभी मौसम का तबीयत एकदम बदल जा रहा है। और ऐसे में शंकर भाई कहीं तबीयत सबसे ज्यादा जो हमारे स्वास्थ्य है वो कहीं बिगड़ ना जाए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए।
0: प्रकृति जब अपने मिजाज को बदलती है तो स्वाभाविक है जनमानस प्राणी सबका मिजाज बिगड़ेगा।
1: बिल्कुल शंकर भाई, मौसम परिवर्तित हो रहा है, पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपने शरीर के लिए क्या करें?
0: बिल्कुल, ये तो बहुत सटीक प्रश्न है। देखिए सबसे पहली बात तो यह कि जब प्रकृति के साथ हम मिलके चलेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और प्रकृति को जहां तक हम समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं हानि हम लोग ही पहुंचा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम ही लोगों से तो प्रकृति है और प्रकृति को भी हानि हम ही लोग पहुंचा रहे हैं।
0: मतलब कल कारखाने ये वो गंदा पानी धुआं ये सब जो जा रहा है वातावरण में वो कहीं ना कहीं तो हमारे ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो पेड़ पौधे अधिक लगाना चाहिए और नदी हो तालाब हो आसपास के स्थान हो उसकी सफाई पर ध्यान देना चाहिए।
1: और सबसे ज्यादा तो रवि भाई कि हमारे मन की सफाई होनी चाहिए। जी जी, सबसे ज्यादा शंकर भाई हमारे मन की सफाई होनी चाहिए। और शंकर भाई देखिएगा कि अभी ना इतनी भागदौड़ भरी हमारी जिंदगी हो गई है कि अधिकतर जो पितावर के लोग हैं, जो माएं हैं और जो हमारे किसान भाई बहन हैं, अक्सर अपने छोटों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। और छोटे बच्चे भी देखिएगा कि आजकल मोबाइल में टेलीविजन में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं।
0: पूरे भाई ये हम तो यही देख रहे हैं कि बहुत ऐसे माँ पिता हैं जो अपना जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बाद में उसका जो दुष्परिणाम आ रहा है
1: एकदम
0: बहुत ही घातक,
1: बिल्कुल
0: बहुत ही बुरा।
1: और शंकर भाई यही कारण है ना कि हम अपने बच्चों को कभी प्रकृति के बारे में बताते नहीं हैं, उन्हें कभी घुमाने बाहर की ओर नहीं ले जाते हैं। और उन्हें पता कैसे चलेगा कि हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, हर रोज किसी ना किसी को स्पेशल दिन मनाया जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: और ठीक उसी तरह शंकर भाई आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी कहते हैं।

0: ये दिन हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को प्रवासी पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। शंकर भाई, जब आप सोचते होंगे कि पक्षी हजारों किलोमीटर कैसे यात्रा कर लेते हैं, उनके पास तो कोई साधन भी नहीं है, ना जीपीएस है, ना कोई नक्शा है, ना कोई गूगल का सहारा है, तो वो कैसे इतनी दूरी तय कर लेते हैं। और इन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये पक्षी मौसम बदलने पर देश में एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। शंकर भाई, प्रवासी पक्षी हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: ये कीटों को नियंत्रित करते हैं, पौधे के बीजों को फैलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, इकोसिस्टम में सहयोग करते हैं।
1: भाई, ये जितने भी 84 लाख योनियां है ना इस धरती पर, ये पर्यावरण और प्रकृति के अंदर
0: जी,
1: सबका एक दूसरे से कहीं ना कहीं अन्योन्याश्रय संबंध है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो एक दूसरे के पूरक हैं। आज आप देख लीजिए कि पक्षियों की बात आप कर रहे हैं तो गिद्धराज,
0: हाँ,
1: उनका समझ लीजिए कि विलुप्त वो हो चुके हैं
0: जी, एकदम रेड डाटा बुक में उन्हें रखा गया है विलुप्त होने की प्रजाति में।
1: बहुत ऐसे पशु पक्षी हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं
0: जी,
1: उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो उनको जीने में कठिनाई हो रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो आज के दिन हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जल स्रोतों को बचाएं और प्लास्टिक जैसे चीजों का हम कम उपयोग करें।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: और देखिए, आपने तो एक बात बताई, तो एक बात मुझे भी याद आ गई।
0: क्या क्या क्या?
1: आज दुनिया भर में गुरुदेव के नाम से जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी जन्म।
0: बिल्कुल बिल्कुल रवि भाई, आपने
1: मना रहे हैं आज हम लोग।
0: एकदम आपने सही कहा, हर जगह स्कूल में, कॉलेजों में, तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसका आयोजन होता है।
1: ये टैगोर जी जो रहे, इन्होंने कवि, लेखक, उपन्यासकार, चित्रकार, संगीतकार, शिक्षाविद एवं दार्शनिक के क्षेत्र में भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाई।
0: अच्छा,
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता के देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के घर सबसे छोटे पुत्र के रूप में हुआ था।
0: जी जी जी।
1: और ये टैगोर साहब जो थे, ये 13 भाई बहन थे, सबसे छोटे थे ये।
0: बाप रे बाप, 13 भाई बहन।
1: 13 भाई बहन
0: जी जी।
1: और देखिए, इनका जीवन काल बड़ा ही अचंभित रहा कि जब ये छोटे उम्र के थे तब से ही इनके अंदर साहित्य की रुचि बढ़ गई थी और ये कुछ लिखने लगे थे।
0: जी जी।
1: और उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 2000 गीतों की रचना की।
0: बाप रे बाप।
1: जिन गीतों को पूर्व भाई रविंद्र संगीत के नाम से हम लोग जानते हैं।
0: जी जी, एक विधा ही।
1: 2000 कविताएं, 8 उपन्यास, 50 से अधिक नाटक, सैकड़ों कहानियां एवं निबंध की रचना की।
0: जी जी।
1: जिन रचनाओं में गीतांजलि, काबुलीवाला, आंख की किरकिरी, घोरे बाईरे, चोखेर वाली जैसी रचनाएं आज भी प्रासंगिक।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और गुरुदेव के काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए ही तो उन्हें 1973 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस प्रकार के वे पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे।
0: अच्छा, पहले एशिया में सबसे पहला। हाँ। और जी,
1: और देखिए सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव को हम लोग गुरुदेव क्यों कहते हैं
0: जी,
1: इन्होंने कुछ काम ऐसा किया
0: जिसके वजह से,
1: हाँ, नई राह प्रदर्शन किया है हमारे भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए।
0: जी जी।
1: उन्होंने
0: जी।
1: भारत का राष्ट्रगान जनगणमन भी लिखा।
0: बिल्कुल।
1: बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा।
0: जी जी।
1: इस प्रकार उन्होंने भारतीय साहित्य संस्कृति को एक नई दिशा दी।
0: बिल्कुल।
1: टैगोर ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के बजाय रचनात्मकता एवं प्रकृति के बीच शिक्षा पर अधिक जोर दिया, जिसके सुंदर उदाहरण आप जानते हैं
0: जी,
1: कि 1901 ईस्वी में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग शांति निकेतन के नाम से भी जानते
0: जी।
1: हैं, उसकी स्थापना की, जो आज के वर्तमान समय में भी कला, संगीत एवं ज्ञान का एक अद्भुत केंद्र स्वरूप
0: विद्यमान है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: सच में पूर्व भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर एक दूरदर्शी व्यक्ति थे,
0: एकदम थे,
1: जिनका मानवतावादी दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। उनकी जयंती हमें उनके विचारों, सत्य, करुणा एवं स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाती है
0: जी।
1: आज जब शिक्षा सिर्फ नौकरी का जरिया बन गई है, वहीं आज गुरुदेव की जयंती हमें यह याद दिलाती है कि असली शिक्षा वही है जो हमें एक सच्चा इंसान बनाए।
0: बिल्कुल, मानवता जिसमें आ जाए वही शिक्षा सिखाती है।
1: और उनके द्वारा कही गई बातें एकला चलो रे हमने हमेशा साहस भरने का काम कर दिया।
0: जी जी जी।
1: सचमुच उनका मानना था कि इस नश्वर संसार में कोई किसी का नहीं,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि अदृश्य शक्ति कोई है जो हमें कठिनाइयों से सामना करने का हिम्मत देती है। और इस संदर्भ में एक बात और बताऊं पूर्व भाई
0: जी जी।
1: कि गुरुदेव का एक कथन उस समय का है जब वे शांति निकेतन को बनाने का काम कर रहे थे और कई परेशानियां उनके इर्द गिर्द मंडरा रही थी।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने कहा था, हे ईश्वर, हमारे प्रारब्ध में जो कठिनाई लिखी है उसे अवश्य दे दो।
0: अच्छा,
1: उसे अवश्य दे दो
0: जी,
1: पर उस कठिनाइयों का सामना कर सकूं इतनी शक्ति तो दे दो
0: जी। मतलब दुख भी मांगना है और दुख सहने के लिए उतनी ताकत भी मांगना।
1: चलिए, आज हम लोग इनकी जयंती मना रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, और इस जयंती पर ही हम लोग कुछ विशेष बात
0: अच्छा
1: सुनते हैं बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित कविराज कुमार जी की आवाज में।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो अपने मुख से क्या बता रहे हैं उनके बारे में, जरा गौर से सुनते हैं
0: जी। जी आइए
1: श्रोताओं, आए दिन हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कृषि, शिक्षा, खेल, चिकित्सा जैसे अनेक विधाओं से जुड़े जानकार लोगों से जीवनोपयोगी बातों को सुनवाते रहते हैं, और आज इसी कड़ी में हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती के सुअवसर पर आइए आपको सुनवाते हैं कविराज कुमार जी के मुख से टैगोर जी के जीवन काल एवं कार्य क्षेत्र से जुड़ी कुछ अविस्मरणीय विशेष बातें। भाई साहब नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार,
1: कैसे हैं भाई साहब?
2: ना ठीक तो हैं, अच्छा है।
1: आज मेरी इच्छा हुई कि हमारे गुरुदेव टैगोर जी भी एक अच्छे कवि रहे और आप भी भागलपुर प्रांत के एक अच्छे कवि हैं, तो आपसे कुछ उनके बारे में कही अनकही बातें, कुछ अनसुनी बातें जो हम लोग नहीं जान रहे हैं, ऐसी बातों को कुछ आप बताएं हमारे श्रोताओं को। और विशेषकर ये हम आपसे जानना चाहेंगे दादा कि भागलपुर से उनका कैसा लगाव रहा और वो कब आए और यहाँ के बारे में उन्होंने क्या लोगों से बातचीत की, और एकला चलो रे जो उनका एक कथन है इस पर थोड़ा सा विशेष तौर पे आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, सबसे पहले तो वो ऐसे कवि हैं
1: जी
2: जो प्रकृति और संसार को
1: जी
2: दोनों को समन्वित करके लेकर के चले
1: जी,
2: तो उनका जोड़ा है नहीं। वह एक अद्वितीय और ऐसे दिव्य पुरुष का आगमन कभी कभी होता है
1: जी, बिल्कुल आपने सही।
2: और इन्होंने इनका जो आविर्भाव हुआ वह अभी देखिए इनके देश हित में, राष्ट्र हित में और विश्व हित में हुआ। ये सबसे बड़ी बात रही इनके जीवन के साथ में।
1: जी,
2: हम सबसे पहले इनको एक दोहा के माध्यम से प्रणति निवेदित करते हुए तब हम बात को आगे बढ़ाते हैं
1: जी,
2: और भागलपुर की बात हम सामने में रखेंगे
1: जी।
2: हम उनको प्रणाम करते हुए यह कहते हैं अपनी दो पंक्ति में कि है गुरुदेव रविंद्र को लाखों

0: इनका एक दो वचन हम आपको सुनाते हैं
1: जी
0: कि इन्होंने कहा क्या है और इनके इनके बात में कौन सी ऐसी बात है जो कि हमको प्रभावित करता है। देखिए, इन्होंने कहा कि सत्य को जिस दिन प्रत्यक्ष देखोगे उसी दिन उत्सव है।
1: क्या
0: अब उत्सव है? अब सत्य को प्रत्यक्ष देखने कौन कह सकता है? यह तो वही कह सकता है जिन्होंने सत्य को प्रत्यक्ष रूप में देखा हो।
1: जी बिल्कुल।
0: तो यह इनकी जिंदगी आगे बढ़ी। फिर उन्होंने कहा कि शांति में ही सौंदर्य की पूर्णता है, विरोध में नहीं।
1: वाह।
0: अब देखिए, यह जो है शांति में ही सौंदर्य की पूर्णता है, जरा इसको समझिए कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जब तक अंदर से और बाहर से हम यदि शांत नहीं होते हैं तो हम सौंदर्य का बोध नहीं कर सकते। एक घटना आती है कि गुरु रविंद्र एक बार नदी के किनारे टहल रहे थे
1: जी।
0: रास्ते में एक गड्ढे में सूर्य के संपूर्ण प्रतिबिंब को देखा।
1: क्या बात।
0: जब संपूर्ण सूर्य के प्रतिबिंब को देखा तो उन्होंने अपनी और ताका और उनको यह बोध हुआ कि सचमुच में एक गड्ढे में भी सूर्य का प्रतिबिंब उजागर हो रहा है, उजागर हो रहा है। इसलिए संसार का प्रत्येक व्यक्ति हो या प्रत्येक जीव हो, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब है। इसीलिए वो प्रकृति के कवि रहे, प्रकृति से उनका सीधे संबंध रहा।
1: जी जी, जी।
0: संबंध क्यों रहा? इसलिए कि प्रकृति को उन्होंने नज़दीक से अनुभव किया था।
1: जी।
0: भागलपुर में जो बात आई तो भागलपुर में भागलपुर में गुरुदेव का कैसा आंतरिक संबंध है
1: जी,
0: कि इसको समझने के लिए हम यहाँ के वंगीय साहित्य परिषद को ही समझना होगा, है ना
1: जी।
0: यहाँ का जो वंगीय साहित्य परिषद के तृतीय वार्षिक सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था।
1: ओ
0: हाँ। और यह 13 से 15 फरवरी 1910 में
1: ये घटना की बात है।
0: हाँ। और यहाँ वे आए 13 तारीख, 3 दिवसीय था, 3 दिवसीय यहाँ रहे। आज जो रविंद्र भवन जिनको आप कह रहे हैं
1: जी, टिल्ला
0: वो टिल्ला कोठी था। और टिल्ला कोठी अभी कहाँ है? तो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है
1: जी, बिल्कुल।
0: और वहीं वे रुके। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ गीतांजलि की कुछ पंक्तियाँ उनके अंदर से स्फुरित हुई थी और यहाँ लिखे थे। गीतांजलि की कुछ पंक्तियाँ भी यहाँ दिए। और यह हमको ये जो है ये बंगला साहित्य को लेकर के और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के लिए हिंदी पर भी इनका प्रवचन था।
1: अच्छा।
0: हिंदी को भी ये बढ़ावा देने के लिए वे बात किए थे। एक चीज और भी हम जरूर कह देना चाहते हैं कि ये वंगीय साहित्य परिषद उस समय का जो ये अधिवेशन हुआ तो वो इसका कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं था।
1: अच्छा।
0: हाँ। तो इसका अभी भी आदमपुर में देखते होंगे वही है।
1: अच्छा।
0: और वहीं को खुले मैदान में इनका परिवचन या अध्यक्षता किए थे। अध्यक्ष। अच्छा। अध्यक्ष होने के नाते इनका बहुत सुंदर और बहुत सार गर्वित वचन निकला था और लोगों को आज तक वह बात जो है लोगों के अंदर में बैठ करके और उत्साहित करता है साहित्य के प्रति।
1: इनके बारे में तो बहुत बात आपने बताई भाई साहब, लेकिन एक एकला चलो रे इसके बारे में थोड़ा सा आप दृष्टिपात करें।
0: एक चीज और देखिए, हम उसके उस पर बात करेंगे, लेकिन एक चीज जानिए कि ये जो वंगीय साहित्य परिषद का आखिर निर्माण कौन किए, जरा इस व्यक्ति को भी पहचानिए।

0: महान उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी, सुरेंद्रनाथ गंगोपाध्याय, गिरीशनाथ गंगोपाध्याय, विभूति भूषण भट्ट, निरुपमा देवी जैसी चोटी की बंगला साहित्यकारों के सहयोग से ही 1905 में वंगीय साहित्य परिषद अस्तित्व में आ चुका था। इसका अपना भवन न होने से अधिवेशन का आयोजन 1854, हम बता दे रहे हैं, 1854 में स्थापित भागलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी में हुआ था।
1: अच्छा,
0: तो ये आज भी आदमपुर में देखा जा सकता है। एक बार और इनका आगमन हुआ है जिसकी चर्चा हम भूल जाते हैं। ये एक बार 1912 में भी इनका आगमन
1: भागलपुर में
0: हुआ। वह क्यों हुआ? वह इसलिए हुआ कि भागलपुर ब्रह्मो समाज की इकाई के द्वारा इन्हें सम्मानित करने के लिए यहाँ की इकाई उनसे आग्रह की थी।
1: अच्छा,
0: और वो यहाँ उनका सम्मान हुआ था, आग्रह पूर्वक सम्मान हुआ। और बहुत ही व्यस्त होने के बावजूद भी गुरुदेव रविंद्र का आगमन यहाँ हुआ। यह भागलपुर का सौभाग्य है कि विश्व स्तरीय गीतकार, कवि, चित्रकार, नाटककार का आगमन हुआ, जो विश्व वाङ्मय में जिनका नाम गुंजरित है, गुंजरित रहेगा।
1: जी जी जी।
0: एकला चलो की जब हम बात आते हैं तो हमको जाना होगा कि इनके अंदर में, चूंकि यह तो आप जान रहे हैं कि इनका जन्म के बाद इनके माँ का देहांत बचपन में ही हो गया।
1: अच्छा,
0: बचपन में होने के बाद में इनके नौकर चाकर के द्वारा इनका पालन पोषण, हाँ कि इनके एक भाई जो हैं इनको पढ़ाए हैं, लेकिन ये पिताजी के साथ निकल चुके हैं घूमने के लिए एक बार। और वह ऐसा कहा जाता है कि यह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में वहाँ के गुरुवाणी सुने और 2 महीना तक कहा जाता है रहे वहाँ।
1: अच्छा,
0: और वहाँ रह करके पिता पुत्र वहाँ आमंत्रित थे और वहाँ बैठ करके रोज उनका जाना, गुरुवाणी सुना, प्रार्थना सुनना इनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा, पड़ेगा ही। अच्छा, जो आदमी हृदय से प्रकृति से जुड़ा हुआ हो उस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचिएगा
1: जी?
0: ये हम तो जान ही रहे हैं, ये एक महान रचनाकार थे, दार्शनिक थे, और इनकी कृतियों में प्रेम, वियोग और राष्ट्र प्रेम के भावों का सामाजिक और वैचारिक उत्थान के आदर्श झलकते हैं
1: जी।
0: ये तो स्वाभाविक है, झलकेगा ही।
1: जी, जी, जी, बिल्कुल।
0: तो एकला चलो में हमको लगता है कि कबीर की एक पंक्ति है, कबीर साहब हमको लगता है गुरुवाणी के स्तर में हो सकता है कि प्रभावित इनको किया हो कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो ये चले हमारे साथ में, जो घर जा रहे अपना, घर जाने का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये घर का जो एक ये शत्रु पक्ष है इसको संभाव में ले आना, जलाने का मतलब है
1: जी, जी।
0: इसको कर देना। तो ये बात आया हो कि जदियो तुम्हारे ढक सुने क्यों ना आसे, तू अकेला चलो रे। तो अकेला चलो का मतलब है कि विश्व भी अकेला है, ईश्वर भी अकेला है, और व्यक्ति जो आया है वह भी अकेला है, और जो आया है अकेला वह अकेला ही जाएगा, और अकेलेपन का बोध न हो करके वह ईश्वर और प्रकृति से जुड़ करके यदि काम करता है तो उनका गंतव्य जो है बहुत ही सुंदर होता है।
1: कहने का मतलब है कि ये लेखक, साहित्यकार, कवि, चित्रकार होने के साथ साथ संत मत के भी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे।
0: संत तो हैं ही
1: जी,
0: संतत्व तो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है
1: जी।
0: यदि संतत्व ना होता तो ये देश को राष्ट्रगान देते।

0: बांग्लादेश को का जो राष्ट्रगान है
1: जी,
0: अमर सुनर बांग्ला, यह भी तो इन्हीं का देन है
1: जी।
0: और तो श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है उस पर भी इनका प्रभाव है
1: जी।
0: इसको हमको समझना
1: जी,
0: होगा
1: जी, बिल्कुल आपने सही बात बताई।
0: और देखिए इनके फिर एक उक्ति बोल देते हैं, गढ़ने में संयम की जरूरत होती है, समझिएगा, नष्ट करने में नहीं। आप संयम को संयम से यदि आत्मसात कर लीजिए तो निश्चित रूप से दर्शन आपका बहुत साफ होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात
0: है। और यही कारण है उन्होंने कहा कि कलंक को अपने तक सीमित रख कर चंद्रमा अपना प्रकाश समस्त आकाश में बिखेर देता है।
1: क्या बात है।
0: तो आदमी आया और समुच्चय अपने प्रकाश को, चंद्रमा को संत माना गया है, याद रखिएगा।
1: और यह सचमुच में आपने बहुत ऐसी जानकारी आज हमारे श्रोताओं को दी जो आम तौर पे लोग नहीं जान रहे थे, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रानी अबक्कर
2: फिर से एक बार अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं संदेश सुनने के बाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हम आपने जो बाह्य ध्वनिंकन किया है, कितना अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आज चर्चा हुई, बातचीत हुई। अब रवि भाई, हुआ कि हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़े और कार्यक्रम में आगे बढ़ने के दौरान हमारे ना लोक संगीत में बहुत सारी विधाएं हैं।
3: बिल्कुल।
2: और लोक संगीत तो ऐसा जैसे कि हर चीज के लिए गाना बना हुआ है। खेती के लिए गाना है, मुन्नन नगर संस्कार है तो उसके लिए भी गाना है, मतलब हर पर्व हर त्यौहार के लिए गाना है। तो आइए लोक संगीत की परंपरा से ही एक जत्सार आप सभी को सुनवाते हैं, अपने श्रोताओं को, जिसमें शेर भर गेहुआ गीत के बोल हैं और जिसे गाया है रिद्धि मिश्रा जी और उनकी सहेलियों ने। आइए सुनते हैं।

0: कितना
1: बहुत सुंदर।
0: सुंदर। देखिए ये पूरा भाई, अभी तो जतसार क्या बोला जाए, जाता पीसते हुए जो महिलाएं आटा सत्तू ये जो
1: तैयार
0: पीसते,
1: करती हैं।
0: हाँ, तो
1: जी जी
0: ऐसे समय में वो समय था,
1: हाँ
0: अब इसका
1: हाँ
0: प्रचलन घट गया, आज आटा चक्की मिल ने ले लिया है,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: ये संस्कार आज भी गांव में कहीं ना कहीं देखने को
1: बिल्कुल।
0: मिल
1: और मुझे
0: जाता
1: लगता
0: है।
1: है ना शंकर भाई कि धीरे धीरे जैसे हम लोग ठीक है मशीन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद अब कुछ दिन में, शायद कुछ वर्षों में हम फिर से पीछे लौट कर आएंगे। और
0: बिल्कुल
1: जो वो स्वाद है, जो हमें बिना मिलावट वाले सामान पसंद
0: बिल्कुल
1: है, जो
0: बिल्कुल,
1: हमें ऑर्गेनिक चीजें
0: आज
1: पसंद
0: बीमारी
1: है,
0: का कारण क्या है
1: जी
0: पूर्व
1: जी
0: भाई,
1: जी जी
0: वही तो है, हम परंपरा को कहीं ना कहीं भूल
1: खोते
0: रहे
1: जा
0: हैं।
1: रहे
0: हाँ,
1: हैं।
0: तो
1: जी
0: उस पे जब लौटेंगे, योगा पे लौट आए ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ
1: गांव की तरफ लौट आए।
0: है ना, गांव की
1: जी
0: तरफ लौट आए,
1: जी जी
0: ये
1: जी तो
0: बात
1: धीरे
0: है।
1: धीरे जी। शंकर भाई अभी हम लोग ना विश्व प्रवासी दिवस की बात कर रहे थे कि हम पक्षियों को उनके लिए पेड़ लगाए, जंगल बनाए,
0: बिल्कुल।
1: और वन का महत्व कितना है और उसका संरक्षण हमें किस प्रकार करना चाहिए। हम अपने श्रोताओं को एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनाते हैं। माखन प्रसाद शर्मा जी हैं वार्ताकार, और वो बताएंगे कि वनों का महत्व क्या है और उनका संरक्षण हम कैसे
0: कैसे
1: कर सकते
0: करें,
1: हैं। जी
2: ऐसे क्षेत्र जो सामान्यतया उपेक्षित अथवा कृषि विहीन हों और जहाँ घने लंबे वृक्ष उगे हों, वन की परिभाषा में आते हैं। इन्हें जंगल भी कहते हैं। दूसरे अर्थों में ऐसे स्थान जहाँ से ईंधन, लकड़ी, चारा और अन्य वन उपज मिलती हो और निकटवर्ती गांव अथवा कस्बे के निवासी उसे अपने जीवन यापन का या उनकी निजी उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं का प्रदान करने का माध्यम मानते हों, वन कहलाते हैं। वैधानिक दृष्टि से वनों का आशय उन क्षेत्रों से है जो वन अधिनियम में वर्णित विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत घोषित कर दिए गए हों। पर्यावरण की दृष्टि से वन पेड़ पौधे और वनस्पति से आच्छादित वे क्षेत्र हैं जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की संक्रिया से वापस ऑक्सीजन देकर वायुमंडल को संतुलित रखते हैं। अतः निश्चय ही वन पेड़ पौधे वनस्पति तथा जीव जंतु के ऐसे स्थल हैं जो प्राकृतिक संसाधन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में जाने जा सकते हैं और जिन पर प्राणी मात्र का अस्तित्व टिका है। विज्ञान ने यद्यपि पिछले कई सौ वर्षों में इतनी प्रगति कर ली है कि अब दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं अथवा अनेक प्रकार के आवश्यक और सुख सुविधा के साधनों में वैकल्पिक पदार्थों का उपयोग कर लकड़ी के इस्तेमाल को कम कर दिया है, लेकिन फिर भी लकड़ी की खपत में कोई कमी नहीं है। इसका कारण यह है कि जिन वस्तुओं को लकड़ी से बनने में पहले भी प्राथमिकता दी जाती थी, वहाँ बहुत अंतर नहीं आया है। जैसे कार्यालय के फर्नीचर, बड़े बड़े भवनों के दरवाजे, खेल का सामान, संगीत के उपकरण आदि। भारत में तो लकड़ी का बहुत अधिक उपयोग सवदाह के लिए होता है। फिर भी जहाँ लकड़ी का उपयोग कम भी किया है, उस कमी को बढ़ती जनसंख्या के दबाव ने पूरा कर दिया है। वनों का महत्व केवल लकड़ी को ईंधन या कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जाति ही नहीं अपितु प्राणी मात्र के जीवन हेतु इनके अनेक पर्यावरणीय एवं भौगोलिक महत्व हैं। वन पानी और मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षा करते हैं। भूमि क्षरण रोकते हैं, भूसतही जल को रोककर उन्हें स्वच्छ कर भूमिगत जल में भेजते हैं तथा जमीन की नमी को बनाए रखते हैं। वन नदियों के प्रवाह को नियमित करते हैं, उनके प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी को बहकर जाने से रोकते हैं, बाढ़ रोकते हैं या कम करते हैं। वन आच्छादित क्षेत्र वायुमंडल की आर्द्रता बनाए रखते हैं, जिससे अधिक वर्षा की संभावना रहती है। अनेक पशु पक्षी और जीव जंतुओं का ये आश्रय स्थल होते हैं। वन शेर जैसे वन्य जीव को आश्रय देकर पर्यावरण संतुलन की भूमिका निर्वाह करने में सहायक बनते हैं। वनों से औषधियां प्राप्त होती हैं, जिनसे प्राचीन काल से ही मानव तथा पशु पक्षियों के रोगों का उपचार होता आया है। वन आदिकाल से आज तक हमारे रोजी रोटी का साधन भी रहा है। यह कई प्रकार के कुटीर उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, जैसे बेंत का फर्नीचर, बांस और अन्य लकड़ियों के सामान, खिलौने, बीड़ी हेतु पत्ते, खाने हेतु पत्तों की थालियां आदि। मनुष्य के काम में आने वाली अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं वनों से प्राप्त होती हैं, जैसे गोंद, लाख, कत्था, शहद, रबड़, मोम और न जाने कितने प्रकार की गौण उपज वनों से हमें वरदान स्वरूप मिलती हैं। अब तो वनों को मनोरंजन स्थल के रूप में भी विकसित कर इन्हें आय के साधन के रूप में बनाने का विचार चल रहा है। वन जल जल चक्र और वायु चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्राण वायु यानी ऑक्सीजन के संचित कोष स्थल हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन देते हैं और प्रत्यक्ष रूप से विश्व तापन रोकने में इनकी महती भूमिका है। वन भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। वृक्षों से भूमि पर गिरने वाली पत्तियां आदि सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं, इससे मिट्टी को जीवाश्म की प्राप्ति होती है। वन से हमें एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि अब छोटे बड़े कल कारखानों से होने वाले प्रदूषण को रोकते हैं। घनी वृक्षावली कई प्रकार की विषैली गैसों का अवशोषण करती है। वृक्ष आश्चर्यजनक रूप से ध्वनि प्रदूषण को भी कम करता है। आर्थिक दृष्टि से वनों की महत्ता को बतलाते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक का आकलन है कि 50 वर्ष आयु के 50 टन भार वाले एक वृक्ष को यदि अगले 50 वर्षों तक जिंदा रखा जाए तो उसका प्रतिदान उस वृक्ष द्वारा ऑक्सीजन छोड़ने, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने, जल का पुनर्चक्रीकरण तथा आर्द्रता पर नियंत्रण रखने, भूक्षरण की रोकथाम तथा उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी, उसके पत्तियों से प्रोटीन और वसा निर्माण, पशु पक्षी कीड़ों तथा पौधों का संरक्षण करने से कुल आर्थिक आय 15 लाख होता है। यदि इसी पेड़ को काटकर इसकी लकड़ी बेची जाए तो उसका कुल अधिकतम मूल्य मात्र 15,000 रुपये ही मिलेगा। अतः स्पष्ट है कि वन हमारे लिए आर्थिक, स्वस्थ जीवन, पर्यावरणीय और भौगोलिक सभी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मानव जाति के लिए यह दुर्भाग्य की बात रही कि हम वनों की रक्षा करने के बजाय इसका विनाश ही करते रहे। वन विशेषज्ञों के अनुसार वन विनाश के पीछे बढ़ती जनसंख्या का दबाव और उसके साथ ही निरंतर बढ़ते पशुधन ही इसका कारण रहा है। भोजन पकाने के लिए ईंधन, शवदाह के लिए लकड़ी का प्रयोग, इमारतों में लकड़ियों का उपयोग, अन्न पैदा करने के लिए वनों का काटा जाना, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कारखानों के लिए ईंधन हेतु तथा कच्चे माल के रूप में खिलौने, डब्बे, कृषि के औजार, शहरों में धनाढ़ियों के ड्राइंग रूमों की साज सज्जा और बनावटी दीवारें तथा छतें आदि न जाने कितने चाहे अनचाहे लकड़ी के प्रयोग ने वनों की सामत ला दी। लकड़ी का उपयोग चलता रहा, वन कटते रहे। अतः वर्तमान समय की मांग है कि मनुष्य के जीवन रक्षण हेतु वनों का संरक्षण किया जाए। वन संरक्षण पर विचार करने के क्रम में हमारे देश में वनों के संरक्षण हेतु अब तक किए गए व्यक्तिगत, सामूहिक, सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों को आपके समक्ष रखना प्रसंगानुकूल और महत्व का ही।
1: जी शंकर भाई, रवि माखन प्रसाद शर्मा जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वनों के महत्व के बारे में उन्होंने बताया। तो अब कुछ मौसम के बारे में, क्योंकि बदलते मौसम की बात तो हम लोग कर ही रहे थे, तो कुछ मौसम संबंधित जानकारी और सुझाव भी दिए जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्व भाई
1: जी,
0: ये आज से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
1: एकदम संभावना तो है,
0: खासकर औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर, रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का भी अनुमान है।
1: अच्छा।
0: और अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है।
1: जी जी।
0: सापेक्ष आर्द्रता प्रातःकाल में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। और पूर्वानुमान की अवधि में पूर्वाई 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा भी चल सकती है।
1: जी, जी, जी।
0: इसलिए सामान्य सलाह दी जाती है किसान भाइयों को कि आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रख दें
1: जी।
0: और खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित कर दें। खाद कीटनाशक का छिड़काव यदि करना हो तो आसमान साफ रहने पर ही करें।
1: जी जी, तो खाद पानी का छिड़काव हो ही गया है। अब कुछ संदेश सुन लेते हैं और फिर उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: जी, संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और शंकर भाई, अभी ना लग रहा है कि अब आम लीजिए धीरे धीरे अब आने शुरू हो रहा है,
3: आने शुरू हो गया कि बाजार में बिक रहा है पूरा। भाई कहाँ है आप?
2: जी जी जी जी ना, हम लोग की तरफ थोड़ा लेट से आता
3: है। आप चखे नहीं अभी तक क्या?
2: जी जी जी जी जी।
3: अरे ठीक है, लेकिन अभी चखने का नहीं है,
2: नहीं है।
3: लेके कि थोड़ा खट्टापन है उसमें।
2: जी जी जी जी,
3: मतलब पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, फिर भी हमारे किसान भाई लोग अधिक दाम पाने के लिए बाजार में उतार दिए
2: जी, पहले उतर जाते हैं
3: तो ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्वाद के लिए नहीं बल्कि उसको शौक से भी लोग खरीद लाते
2: जी,
3: हैं
2: जी,
3: और थोड़ा सा खाते हैं, ठीक है।
2: तो जी शंकर भाई, तो अपने श्रोताओं को कि लीची के बाग की हम देखभाल कैसे करें, हमारे वार्ताकार डॉक्टर संजय सहाय जी हैं।
3: अच्छा।
2: जो बताएंगे कि हम लीची के बाग की कैसे देखभाल कर सकते हैं।
3: आइए सुनते हैं।
4: लीची के फल अपने आकर्षक रंग, स्वाद और गुणवत्ता के कारण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। लीची उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 70% लीची उत्पादन पूरे भारतवर्ष में बिहार के उत्तरी भाग से होता है। लीची कुछ सीमित क्षेत्र में ही गुणवत्ता वाले फल होते हैं। यह क्षेत्र नदी का तटवर्ती इलाका है, जिस कारण मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर आदि जिलों में इसकी अच्छी खेती होती है। लीची बहुत कम समय के लिए ही बाजार में उपलब्ध रहता है, अतः इसकी बाग की देखभाल करना अति आवश्यक है। बाग की देखभाल करने के लिए खाद एवं उर्वरक की आवश्यक मात्रा देना उचित लाभकर होगा। आरंभ के 2-3 साल तक लीची के पौधों को 30 किलोग्राम सरी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नीम की खली, 150 ग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौध प्रति वर्ष की दर से देना चाहिए। उसके पश्चात पौधे की बढ़वार के साथ साथ खाद की मात्रा में वृद्धि करते जाना चाहिए। इस प्रकार 5 किलोग्राम सरी गोबर की खाद, 100 ग्राम नीम की खली, 150 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौधे प्रति वर्ष के हिसाब से वृद्धि करना चाहिए। लगभग 15 वर्ष बाद पूर्ण विकसित वृक्ष में 80 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 2-3 किलोग्राम नीम की खली, 2 किलोग्राम यूरिया, 2.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 0.8 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति पौध प्रति वर्ष की दर से देना चाहिए। करंज या नीम की खली एवं कंपोस्ट के प्रयोग से लीची के फल की गुणवत्ता एवं पैदावार में वृद्धि होती है। लीची के पौधों में फल तोड़ाई के बाद नए कल्ले आते हैं, जिन पर अगले वर्ष फलन आती है। अतः अधिक औजपूर्ण एवं स्वस्थ कल्लों के विकास के लिए खाद, फास्फोरस एवं पोटाश की संपूर्ण एवं नत्रजन की 2/3 मात्रा जून जुलाई में फल की तोड़ाई एवं वृक्ष की कटाई छटाई के साथ ही देना चाहिए। पूर्ण विकसित पौधों के तनों से 150 से 200 सेंटीमीटर की दूरी पर गोलाई में 60 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी खोदकर खाई बना लें। खाई को 5-8 दिनों तक खुला छोड़ने के बाद उसे खाद एवं मिट्टी के मिश्रण से भर दें। इस प्रक्रिया से पौधों में नई शोषक जड़ों का अधिक विकास होता है और खाद एवं उर्वरक का पूर्ण उपयोग होता है। लीची के फलों के तुड़ाई के तुरंत बाद खाद दे देने से फलों में कल्लों का विकास अच्छा होता है एवं फलत अच्छी होती है। शेष नत्रजन 1/3 मात्रा फल विकास के समय जब फल मटर के आकार के हो जाएं तब सिंचाई के साथ देना चाहिए। जिन बगीचों में जिंक एवं बोरान की कमी के लक्षण दिखाई दें उनमें 150 से 200 ग्राम जिंक सल्फेट, 250 ग्राम बोरी के सीक प्रति वृक्ष की दर से सितंबर माह में अन्य उर्वरकों के साथ देना लाभकर पाया गया है। सिंचाई एवं जल संरक्षण, लीची के छोटे पौधों में स्थापना के समय नियमित सिंचाई करनी चाहिए। जिसके लिए सर्दियों में 5 से 6 दिनों तथा गर्मियों में 3 से 4 दिनों के अंतराल पर थाला विधि से सिंचाई करनी चाहिए। लीची के पूर्ण विकसित पौधे जिनमें फल लगना प्रारंभ हो गया हो, उसमें फूल आने के 3-4 माह पूर्व यानी कि नवंबर से फरवरी तक पानी नहीं देना चाहिए। लीची के पौधों में फल पकने के 6 सप्ताह पूर्व यानी अप्रैल के आरंभ से फलों की विकास तेजी से होने लगता है, अतः जिन पौधों में फलन प्रारंभ हो गया है उनमें इस समय उचित जल प्रबंध एवं सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पानी की कमी से फल का विकास रुक जाता है एवं फल फटने लगता है। उचित जल प्रबंध से गुदों का समुचित विकास होता है तथा फल फटने की समस्या कम हो जाती है। विकसित पौधों में छत्रक के नीचे छोटे छोटे फव्वारे लगाकर लगातार नमी बनाए रखा जा सकता है। शाम के समय बगीचे की सिंचाई करने से पौधों द्वारा जल का पूर्ण उपयोग होता है। बूंद बूंद सिंचाई विधि द्वारा प्रतिदिन सुबह एवं शाम 4 घंटा पानी 40 से 50 लीटर देने से लीची के फलों का अच्छा विकास होता है। लीची के सफल उत्पादन के लिए मृदा में लगातार उपयुक्त नमी का रहना अति आवश्यक है, जिसके लिए सिंचाई के साथ साथ मल्चिंग द्वारा जल संरक्षण करना लाभदायक पाया गया है। पौधे के मुख्य तने के चारों तरफ सूखे खरपतवार या धान के पुआल की अवरोध परत बिछाकर मृदा जल को संरक्षित किया जा सकता है। इससे मृदा की भौतिक दशा में सुधार, खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ उपज भी अच्छी होती है। पौधों की देखरेख एवं कटाई छटाई लीची के शुरुआत के 3-4 वर्षों तक समुचित आवश्यकता पड़ती है। खास तौर से गर्मी में तेज गर्म हवा, लू एवं शीत ऋतु में पाले के बचाव के लिए कारगर प्रबंध करना चाहिए। प्रारंभ के 3-4 वर्षों में पौधों की अवांछित शाखाओं को निकाल देना चाहिए, जिससे मुख्य तने का उचित विकास हो सके। तत्पश्चात चारों दिशाओं में 3-4 मुख्य शाखाओं को विकसित होने देना चाहिए, जिससे वृक्ष का आकार सुडोल, ढांचा मजबूत एवं फलन अच्छी आती है। लीची के फल देने वाले पौधों में प्रतिवर्ष अच्छी उपज के लिए फल तुराई के समय 15 से 20 सेंटीमीटर डाली सहित तोड़ने से उनमें अगले वर्ष अच्छे कल्ले निकलते हैं तथा उपज में भी वृद्धि होती है। पूर्ण विकसित पौधों में शाखाओं के घने होने के कारण पौधों के आंतरिक भाग में सूर्य प्रकाश की नहीं पहुंच दवा का छिड़काव ना करें तथा बगीचे में पर्याप्त संख्या में मधुमक्खी के छत्ते रखें। फल लगने के 1 सप्ताह बाद प्लेनोफिक्स 2 मिलीलीटर 5 लीटर पानी यानी या NAA 20 मिलीग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करके फलों को झड़ने से बचा सकते हैं।
2: जी, डॉक्टर संजय सहाय जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि कितना अच्छा इन्होंने जानकारी दी कि लीची के बाग की देखभाल कैसे की जाए।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: जी, तो शंकर भाई, अब झूमर अपने श्रोताओं को एक सुनवाया जाए, क्योंकि जाते जाते मन अगर श्रोताओं का झूम जाए।
3: बिल्कुल
2: बिल्कुल। नजरिया भैलेरे रिद्धि मिश्रा।

0: जाते जाते तो झूमर अपने श्रोताओं को सुना ही दिया है, और शंकर भाई समय हो गया है कि अपने श्रोताओं से,
1: समय तो हो ही चला है, इसलिए अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने घर परिवार सबों का ध्यान रखें, और अगले कार्यक्रम का इंतजार करें, फिर मिलेंगे हम लोग
0: जी। तब सभी
1: तक के लिए विदा चाहिए, तो शंकर का नमस्कार,
0: सभी को पूरों का भी नमस्कार।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी भागलपुर से ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची समेत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा, करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा धनबाद में गैंगवॉर जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। और अवैध शराब के खिलाफ रांची के 3 थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की दबिश, एक अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों सुलहनीय मामलों का विशेष बेंचों का गठन कर निष्पादन किया गया और करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली हुई। रांची सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अदालत का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले, ताकि न्यायालय पर लोगों का भरोसा बना रहे।
2: इन्वेस्टिगेशन तो बहुत मैटर करता है ना, किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन सही होगा तो फिर जो कोर्ट में कन्विक्शन रेट अगर बढ़ेगा तो लोगों में डर का माहौल होगा कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं होता है, एक्विटल होता है, तो जो सही में जो क्राइम किया उसका तो उत्साह बढ़ेगा, चलो करने से कुछ नहीं होता है, फिर करो, रिपीट करो, तो जो डेटरेंस है वो खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन का भी इम्पोर्टेंट है।
1: नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
3: बैठक हुई जिसमें शहर के कचरा प्रबंधन से लेके परिवहन व्यवस्था से लेकर कार्यकलाप को और बेहतर करने की दिशा में तमाम नागरिकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए और मुझको लगता है कि इस बैठक का आउटकम गिरिडीह शहर को और बेहतर बनाने में मदद करेगा।
1: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त और आवश्यक मानकों के संचालित हो रहे फार्मेसी कॉलेज को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को सभी फार्मेसी कॉलेजों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर अंसारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जाँच के लिए विशेष टीम गठित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि सभी तथ्यों की गंभीरता से पड़ताल की जा सके। उन्होंने कहा है कि जाँच के दौरान लापरवाही, नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने पार्टी संगठन में नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के स्तर पर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है, उसे वे उजागर करने का काम कर रहे हैं। श्री किशोर ने कहा कि पार्टी को ज्वलंत मुद्दों और चुनावी वायदे को लेकर मुखर होना होगा।
4: नाराजगी का कोई मामला नहीं है, पार्टी के असर पर जो काम करना चाहिए था वो नहीं हो रहा, लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर अगर पार्टी चुप बैठी है तो फिर किस बात की पार्टी। जो आपने वादे किए थे, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि साथ वादे साथ इरादे, किसी एक पर भी आप मुखर नहीं हो पाए।
1: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गैंगस्टर प्रिंस खान के वायरल वीडियो को लेकर राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच संघर्ष नहीं बल्कि गैंगवॉर जैसी स्थिति बनी हुई है और आम लोगों में भय का माहौल है। श्री मरांडी ने कहा कि संवेदनशील जिलों में कथित रूप से करोड़ों रुपए लेकर पोस्टिंग किए जाने की चर्चाएं कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति जारी रही तो राज्य में कानून व्यवस्था और बदतर हो सकती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार वर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में आज जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ACB ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। न्यायालय ने 18 जून को मामले की अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र से ईसरी बाजार में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि कल हुई इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग। आदिवासियों की जमीन लूट समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री गीता श्री उराव ने कहा कि आदिवासियों को अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से विभिन्न संस्थाओं में आदिवासी धर्म कॉलम लागू करने की मांग की।
5: आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म में जब रिलीजन का कॉलम बनाते हैं तो उसमें आप अदर्स जो हमारे आदिवासियों के लिए है, सरना आदिवासी, उनके लिए आप लोगों ने कॉलम कोड क्यों नहीं रखा? और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है।
1: उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध नकली विदेशी शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 940 पेटी शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग के अवर सहायक निरीक्षक दिलीप कुमार साहू ने बताया कि नगड़ी, रातू और धुरवा थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
6: छापेमारी में 940 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया। अभी जाँच किया जा रहा है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, जांच किया जा रहा है, जांच के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी।
1: जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और 19,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं।
7: एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जामताड़ा जिला के कर्माटांड थाना क्षेत्र में ग्राम सहजपुर में कुछ साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा इस सूचना पर रेड करने के दौरान घटनास्थल से 3 अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से जो बरामद हुआ है 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और लगभग 19,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभियुक्त में

0: और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 15 मई तक तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा, करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर दिए कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा धनबाद में गैंग वॉर जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। और अवैध शराब के खिलाफ रांची के 3 थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की दबिश, एक अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गोपाल भगत का गाया हुआ ये देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम में गोपाल भगत का गाया ये देवी गीत। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, अंतराल के बाद पुनः लोकगीत कार्यक्रम में आपका स्वागत होगा।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भागलपुर से लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं गोपाल भगत। आइए सुनते हैं इनका गाया ये सोहर।
2: कौना रोपल तुलसी के गछिया, कौना प्रतिपालन कर लाल नारे कौन रे बैरिया।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल के तहत खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। लोक भवन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी सहमति के आधार पर मामलों का हुआ निपटारा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गया, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के बिग्रेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इधर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर करना उनकी प्राथमिकता होगी। पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए शहरों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
1: जो नए टाउनशिप की कल्पना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है, और उसके तहत हमको नए शहरों को एक वृहद रूप से भविष्य को देखते हुए उसको हमें विस्तार के साथ साथ उसमें सुविधाएं भी बढ़ानी है। उसके अलावा हमारी जितने भी अभी वर्तमान में शहरी क्षेत्र हैं, या वो नगर निकाय है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, तो उनमें भी बेटर सुविधाएं फैसिलिटीज हमको पहुंचानी है और लोगों को आसानी से सरकार की सुविधाएं मिले, योजनाओं का लाभ मिले और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी क्षमता के अनुसार 100% देते हुए बिहार की प्रगति के लिए और बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकूं।
0: जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हर खेत तक पानी पहुंचाने की है।
2: कि हमारी प्राथमिकता है कि हर खेत तक कैसे सिंचाई का पानी पहुंचाया जाए, एक एक गांव में एक एक खेतों तक, हमारे किसान के खेतों तक पानी पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं, सर्वे हो रहा है और हम लोग का टारगेट है कि 30 तक एक भी खेत नहीं छूटे, किसान के खेतों तक पानी पहुँचे।
0: राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभागीय चुनौतियों को अवसर में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लोगों के प्रति जवाबदेही तय की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी गलत करेंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
3: कल मैंने पदाधिकारी को, कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश भी दिया कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस चीज को याद रखना। तो इसलिए आने वाले समय में एक एक लोग जनता के प्रति जिम्मेवार बने, इसके लिए पदाधिकारी, कर्मचारी, सारा सिस्टम ईमानदारी से और जिम्मेवारी से काम करे तो मैं उसको सम्मान करूंगा। और जो आदमी सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत करेंगे, या तो वो सुधरेंगे या जेल के सलाखे के अंदर रहेंगे।
0: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। लोक भवन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को लिखे पत्र में कार्य योजना की रूपरेखा मांगी है। लोक भवन ने कहा है कि जून महीने में सभी विश्वविद्यालयों के अकादमिक सत्र की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को वित्तीय स्थिति भी अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक को बिहार में नियम कानूनों को सरल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें पुराने कानूनों को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किए गए डी रेगुलेशन के दूसरे चरण के तहत लंबित मामलों को निपटाकर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य

0: के वरीय अधिकारियों के साथ पटना में उच्च स्तरीय बैठक भी की है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालतों में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम वाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए गए। पहली बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की गई। लोक अदालतों में 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग पीठ का गठन किया गया था। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि अररिया में 1,227, शेखपुरा में 545 और शिवहर में 287 मामलों का निष्पादन किया गया। सुपौल में ट्रैफिक चालान से जुड़े 163 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किए जाने की मांग को लेकर कल पटना में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में 5,000 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थियों पर ट्रैफिक बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को युवाओं की कोई परवाह नहीं है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बिहार सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने की जगह सिर्फ सत्ता बचाने और राजनीतिक समीकरण साधने में जुटी है।
1: हमारे TRE के फोर के बच्चों को मारने का जो प्रवृत्ति सरकार ने अपनाई है, मैं उसको लेकर के घोर निंदा करता हूं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और लीडर और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसे गंभीरता से लिया है और हम उन TRE के बच्चों को साथ और उनके संघर्ष के साथ देने के लिए हम तैयार हैं।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। आज गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। रोहतास जिले में कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे अधिक 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है।
0: दिनांक 10 मई

0: उत्तर बिहार के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया। यह मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव में मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कृतज्ञ राष्ट्र आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। राजधानी पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मंत्री लेसी सिंह और रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में पिछले दिनों अपराधियों की गोलीबारी में घायल सभापति राजकुमार कुट्टू का आज पटना में निधन हो गया। उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। गौरतलब है कि अपराधियों की गोलीबारी में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की भी मौत हो गई थी। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बराड़वा फतेह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लग जाने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। अररिया आरएस थाना क्षेत्र स्थित एक किराना गोदाम में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को हरे रंग में डुबोकर बेचने के वायरल वीडियो के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने 9 महिला हॉकरों को गिरफ्तार किया है। आईआईटी पटना परिसर में क्रिकेट खेलते समय करंट लगने से 1 छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र तेलंगाना का रहने वाला था। वैशाली जिले के हाजीपुर टाउन थाना क्षेत्र से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले के कन्होली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने नशीला इंजेक्शन बेचने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। सुपौल जिले की एसएसबी सीमा चौकी न्योर ने स्थानीय पुलिस की मदद से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से 2 महिलाओं को नेपाली शराब और 1,08,000 भारतीय रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बंद होने के कारण लगातार लग रहे जाम को देखते हुए मुंगेर के तारापुर नगर पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने स्केटिंग प्रतियोगिता के विजेता लव और कुश को सम्मानित किया। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। लोक भवन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति के आधार पर मामलों का हुआ निपटारा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गया, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक

0: समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
3: पश्चिम चंपारण जिले में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। बीते दिनों आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी देखी गई, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई जगह जाम की स्थिति बन गई। वहीं मौसम में आई ठंडक से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नंदकिशोर राम को राज्य के नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें डेयरी, पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद जिले सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर तथा आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। इधर जदयू नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पिछले सप्ताह पश्चिम चंपारण से सद्भाव यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में वाल्मीकि नगर के जदयू सांसद सुनील कुमार, पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, पार्टी के पूर्व और वर्तमान विधायक जिलाध्यक्ष कन्हैया कुशवाहा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के दूसरे दिन बेतिया ऑडिटोरियम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कार्यकर्ताओं व आम लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। बेतिया के ऐतिहासिक धरोहर बड़ा रमना मैदान के सौंदर्यीकरण और संरक्षण को लेकर प्रशासन ने सक्रिय पहल शुरू कर दी है। बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि लगभग 2,26,56,892 रुपए की लागत से मैदान का समतलीकरण कर खाली स्थानों पर मुलायम घास बिछाई जाएगी तथा अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों की लंबे समय से इस धरोहर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की मांग रही है। बीते दिनों जिले के लोगों को बड़ी सौगात मिली। अब जिले वासियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यह सुविधा अब जिले में ही उपलब्ध होगी। पिछले दिनों वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और विदेश मंत्रालय भारत सरकार की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने रामनगर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बगहा और रामनगर के विधायक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पहले दिन कुल 35 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए। सांसद सुनील कुमार ने कहा कि अब वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बेतिया या पटना नहीं जाना पड़ेगा। वहीं विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने बताया कि इस केंद्र में प्रतिदिन 45 पासपोर्ट और 5 PCC अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध रहेंगे। जिले में निजी विद्यालयों की कार्य प्रणाली को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी तरुण ज्योत सिंह ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक शुल्क वसूली, अनावश्यक फीस और विशेष दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के लौरिया प्रखंड बाल विकास कार्यालय परिसर में 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने बताया कि यह पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रखंड क्षेत्र में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के जीवन के पहले 6 वर्षों में मानसिक और शारीरिक विकास को मजबूत करना तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जिले के होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर सुरेश प्रसाद को ब्रिटिश पार्टी पार्लियामेंट लंदन में आयोजित विश्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि की जानकारी सामने आते ही पश्चिम चंपारण सहित पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई।
2: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। पश्चिम चंपारण जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
0: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है सामयिक चर्चा।
4: नमस्कार, सामयिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं बिहार की नई सियासत पर आधारित विशेष रिपोर्ट। मैं हूं खालिद रशीद। श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे की। कौन बना मंत्री, किसे मिला अहम मंत्रालय और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इन्हीं मुद्दों पर होगी विस्तार से चर्चा। श्रोताओं, बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले महीने 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद बीते 7 मई को मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने एनडीए के घटक दलों से मनोनीत 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान सबसे पहले श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली।
5: डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं।
4: शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की। नई कैबिनेट में अनुभवी चेहरों के साथ साथ नए और युवा नेताओं को भी मौका दिया गया है। इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 15 मंत्री पद मिले हैं, जबकि जेडीयू से 13 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके अलावा अन्य घटक दलों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री को प्रतिनिधित्व मिला है। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों समेत मंत्रिमंडल में अब कुल 35 मंत्री हैं। संख्या के आधार पर 1 मंत्री पद अभी रिक्त है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विस्तार सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश भी है। अब बात विभागों के बंटवारे की करते हैं। जानते हैं किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है इस रिपोर्ट में।
6: मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता जैसे अहम विभाग अपने पास रखे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त विभाग सौंपा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की कमान दी गई है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग की कमान सौंपी गई है। संजय सिंह टाइगर को शिक्षा और विधि, दामोदर रावत को परिवहन और नीतीश मिश्रा को नगर विकास और आवास तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अशोक चौधरी को खाद्य उपभोक्ता और संरक्षण विभाग, भगवान सिंह कुशवाहा को योजना विकास, अरुण शंकर प्रसाद को श्रम संसाधन, युवा रोजगार और कौशल विभाग का कार्यभार दिया गया है। मदन सहनी को मध्य निषेध और निबंधन विभाग, संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन और रत्नेश सादा को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। पथ निर्माण विभाग कुमार शैलेंद्र को, पर्यटन केदार प्रसाद गुप्ता को और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी लखेंद्र रोशन को दी गई है। वहीं सुनील कुमार को ग्रामीण कार्य विभाग, जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और नंदकिशोर राम को डेयरी, मत्स्य और पशुपालन संसाधन विभाग सौंपा गया है। मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों में शैलेश कुमार और बुलो मंडल को ऊर्जा, डॉक्टर प्रमोद कुमार को खान एवं भूतत्व और कला एवं संस्कृति तथा मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके साथ ही रामचंद्र प्रसाद को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, रामकृपाल यादव को सहकारिता, संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, संजय कुमार को गन्ना उद्योग और दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
4: इस कैबिनेट विस्तार में

युवाओं और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखाई दी है। कैबिनेट विस्तार में 5 महिला मंत्रियों को जगह दी गई है। इनमें भाजपा की श्रेयसी सिंह को उद्योग और खेल तथा रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कमान दी गई है। वहीं जदयू के लेसी सिंह को भवन निर्माण, शीला कुमारी को विज्ञान।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं सुशील ठाकुर। आरंभ में आइए सुनते हैं इनसे ये भजन।

आप सुन रहे थे सुल्लहरी कार्यक्रम में सुशील मोदी का गाया ये भजन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम का ये शीर्षक गीत। स्वर है लता मंगेशकर का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भागलपुर से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं आंधी फिल्म का ये गाना। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत है गुलजार का और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आप सुन रहे थे आंधी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म अभिमान में।

प्रेम पर्वत इस फिल्म का गाना सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। जननिसार अख्तर का लिखा गीत है और जयदेव का संगीत।

आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं सरगम फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

पत्थर के सनम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं मजरू और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म गोलमाल में। इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। अब आप समाचार संध्या का अंक सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब समय है समाचार संध्या का। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. Five MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijayat stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
5: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers' Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the State Government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee came to power in 2011. The new BJP government will work from the Writers' Building, which is a heritage structure. In an important development today, Special Observer for the West Bengal for SIR, retired IAS officer Subroto Gupta has been appointed as the advisor to the Chief Minister of West Bengal and the 2017 batch IAS officer Shantanu Bala appointed as the personal secretary to the CM. It is learned that on 30th May, the newly elected MLAs of West Bengal will take oath at the assembly in Kolkata. Kollan Laha reporting from Kolkata.
4: The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking oath as Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form the government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamaragavetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from the Congress, left parties, Vidutalai Chiruthaigal Kachi, VCK, and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing the TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including the Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. Our correspondent has filed this report.
6: TVK leader Joseph Vijay met the governor along with the supporting MLAs of the Congress, the left party CPI and CPM, VCK and the IUML to form the government. 6 days after the results, this is the fourth time that he met the governor on the issue of having a majority. The governor had earlier cancelled the appointment and was to leave for Kerala, but then he invited the TVK leader to once again meet him today. The party has 120 MLAs for support. Apart from the Congress, who broke the alliance with the DMK, rest of the parties have rendered unconditional support. DMK leader and former Chief Minister M.K. Stalin, AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy extended greetings to the new government which is to be formed tomorrow. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
4: Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed

0: पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है, वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिजाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर RN रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा 5 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्नि मित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, NDA और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इख्तदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में PW टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद नबन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाक़े के तहत आज SIR के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड IS अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के IS अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में तमिल गायत्री कड़गम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मधु किया। अब पार्टी को मजमूरी तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। DMK पार्टी से इतिहास से अलीहदा होकर कांग्रेस ने टीवी के पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआई की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: हालिया असेंबली इंतखाबात में TVK पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असेंबली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि VCK और IUML दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय 2 असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह TVK पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकान असेंबली की मजमूई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि CPI, CPIM, VCK और IUML के 2-2 अरकान असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिजाइल की कामयाब आजमाइश की।

एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहरे हिंद के खत्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने MIRV सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO, भारतीय फौज और सनत की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी दो रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले NDA सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदामात से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वकार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और सामाजिक सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड्स 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुतला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ED ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी GST खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने रिलायंस ADA ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी। CBI के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। CBI ने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और LIC की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधही के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थी। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जेडचुरुज गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जेडचुरु गांव के नजदीक सुपुर्द कर दिया गया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS मुसल्ला अफवाज से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमाए अमराज चश्म की जानिब से किया जा

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन।

का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात कर रही हूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था, तो नहीं, बहुत छोटी कला

0: तैयार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने एफएम्स हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता पर

0: समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी सौ सौ रंग।
1: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
0: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
1: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
0: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR,
0: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन है और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है, और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है। तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
0: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया।

0: छांव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
1: नमस्ते प्यार दोस्तों, मेरा नाम एक जुगवार है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
2: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में, और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई, गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
3: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
0: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
3: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
0: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं, बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
3: और मैं प्रांजल।
4: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
5: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपस होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी 2 अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इसपे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है।
6: मेरा नाम साक्षी है और मैं भालुगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के

0: को जीवान रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है, तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भालुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
1: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
3: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
3: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है, बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
5: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में।

0: को लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है कंपैशन विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
1: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
1: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
2: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
1: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
2: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया, और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया।

0: इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजूमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजूमदार। राजकुमार मजूमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santur under the guidance of the legendary santur maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसमोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santur recital with rag Jan Sammohini, presenting Alap, Jod and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Madhyalay. Drut composition is set to Teen Tal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Tal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor Recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री